नमस्कार, हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं, सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है।

0: सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेरवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

लीजिए सुनिए चिंतन। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता और हृदय में करुणा, यही सच्चे धर्म की पहचान है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान का भाग 268। संगीत सरिता के अंतर्गत आज सुबह 6:45 पर और शाम को पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इसका भाग 2 प्रसारित होगा, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

ली। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। फिल्म संगीत का दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो प्रसारित होगा सुबह 10 बजे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे विविधा में सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न कार्यक्रम का संपादित अंश आप सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यादों की महफिल 12:05 पर और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक सुनिएगा तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की है, रूपांतर जोहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3 प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तरानी नए पुराने। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा में आप सुनेंगे महावीर चक्र कृष्णा नाइक सोनवणे की शौर्य गाथा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, गिटार कलाकार सुनील गांगुली। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटक, अदाकार लेखन लक्ष्मीकांत शर्मा, निर्देशन FC माथुर का। रात्रि 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11 बजे विविधा का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में किष्किंधा कांड, आज भाग 268।

सुग्रीव को बालीवध के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनही बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए। अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला को लेकर संगीत सरिता कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं शुभा मुद्गल जी के साथ। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और फिर से हम उसी घटा और बदरिया में खो जाने के लिए उत्सुक हैं। कल आप बात कर रही थी शुद्ध मल्हार की, और उसी समय आपने ये भी कहा था कि मेघ मल्हार भी कहा जाता है।
1: जी।
0: तो ये राग मेघ और मल्हार दो अलग चीजें हैं, या दोनों एक ही राग है, या ये इसका क्या स्वरूप है?

0: अक्सर ये माना जाता है कि मेघ और मेघ मल्हार को एक ही राग मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघ पृथक है, मेघ मल्हार पृथक है। और चूंकि ये कार्यक्रम बहुत से लोग सुन रहे होंगे, गुणीजनों से तो मैं क्षमा मांग ही लूं कि यदि कुछ ऐसा कह दिया जो जिसमें त्रुटि है, और संभव है, संभव क्या मतलब वास्तव में त्रुटियां होंगी ही, तो उनसे मैं पहले से क्षमा
1: ऐसा
0: मांग लूं।
1: नहीं है। हाँ।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद संगीत सीख रहे हों, उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुमुख से तो ये सीखा जाता ही है, साथ में अन्य बहुत ऐसे शोध करने वाले लोग रहे हैं, शोध करता रहे हैं, जो कि जिन्होंने मल्हार पे बहुत अच्छे ग्रंथ हाल फिलहाल में भी लिखे हैं।
1: जी
0: एक ऐसा ग्रंथ है डॉक्टर गीता बैनर्जी द्वारा लिखा हुआ, मल्हार दर्शन के नाम से। उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि मेघ और मेघ मल्हार किस तरह से पृथक हैं। मेघ जो है वो प्राचीन रागों में माना जाता है, और इसमें ये ऐसा भी डर रहता है कई बार कि इसके जो इसकी जो इसमें जो स्वर प्रयोग में आते हैं तो वो कई बार मधमाद सारंग के आसपास भी चले जाते हैं।
1: जी
0: दूसरी बात ये कि उसमें मेघ मल्हार में दोनों निषाद भी लगाए जाते हैं। फिर मेघ में आंदोलित ऋषभ जो म का एक कण लेके आता है वो बहुत आवश्यक होता है, उससे मेघ की पहचान बनती है। लेकिन ऋषभ पे आप रुकते नहीं हैं, प्राय आप म रे प कह के वो जो स्वर संगति जो मल्हार का
1: मल्हार
0: एक
1: की है।
0: प्रतीक है उस पर आप चले जाते हैं। तो मेघ और मेघ मल्हार बिल्कुल अलग माने गए हैं, और उनकी अलग अलग बातों पे बहुत चर्चा रहती है, मतभेद भी रहते हैं, लेकिन हमें जो सिखाया गया है उसके हिसाब से मेघ अलग और मेघ मल्हार अलग है।
1: मेघ मल्हार जब प्रस्तुत होता है तब वो मेल बनाना भी बहुत मुश्किल होता होगा।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसने बंदिश गढ़ी है उसने किसी एक पक्ष को शायद ज्यादा महत्व दिया हो, तो उसके हिसाब से भी गाना पड़ता है। यानी मेघ मल्हार की जो शक्ल आपको बताई गई है उसको तो ध्यान में आप रखते ही हैं, साथ में उस शक्ल को भी ध्यान में रखते हैं जो कि रचनाकार ने दी है, जो वाग्गेयकार ने बनाई है। क्योंकि हर यही तो हमारे संगीत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। आप एक ही राग को अलग अलग लोगों के अनुभव से देख सकते
1: ये
0: हैं।
1: अपनी अपनी प्रतिभा का आविष्कार होता है।
0: जी
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: मेघ मल्हार का हम चलन भी सुनेंगे, और जो बात आप कह रहे थे कि आंदोलित ऋषभ म का कण लेकर आता है वो भी तो समझाइए ना।

0: वाह वाह। लेकिन जब केवल मेघ गाया जाए तो उसका चलन भी तो अलग होगा। आप जो बंदिश सुनाने वाली हैं वो मेघ मल्हार में है या मेघ में?
1: जी, मैंने मेघ की एक बंदिश आज प्रस्तुत करने के लिए चुनी है
0: जी,
1: और इसका साहित्य मुझे बहुत मजेदार लगा।
0: साहित्यिक पक्ष तो हमें ढूंढना ही है इसका।
1: देखिए क्या इसमें कहा गया है। देखो माई, सावन दूल्हे आयो।
0: सावन को दूल्हा के रूप में। हाँ
1: तो इसे देखिए क्या धूमधाम है दूल्हे की।
0: जी,
1: देखो माई, सावन दूल्हे आयो, चार मास को लग्न लिखायो। तो आपकी जो चौमासे की बात थी,
0: जी
1: आपके जो कार्यक्रम का शीर्षक है उसकी भी
0: जी
1: बात आ गई कि
0: हाँ
1: ये 4 दिन की ही प्रीत है, 4 मास की ही प्रीत है। तो 4 मास को लग्न लिखायो,
0: हाँ
1: क्योंकि उसके बाद तो फिर हेमंत ऋतु शिशिर
0: ये
1: इत्यादि
0: आने
1: सब आ
0: वाले
1: जाते
0: हैं।
1: हैं। तो 4 मास को लग्न लिखायो, बदरन अंबर छायो, बिजरी चमके बगला बराती। जो पक्षी होता
0: अच्छा,
1: है वो
0: बगला।
1: बारात में आया है।
0: हाँ
1: बिजरी चमके बगला बराती, कोयल शब्द सुनायो, दादुर मोर पपैया बोले, इंद्र निशान बजायो। तो
0: वाह,
1: बैंड की कोई जरूरत नहीं है,
0: इंद्र
1: प्रकृति
0: महाराज,
1: ये।
0: जो इंद्र
1: जी
0: ही को ये प्रतीक रूप में माना जाता है, और ये कहा
1: जी
0: गया है कि बरसात के या वर्षा के जो स्वामी हैं, देव भगवान जो कोई देवता है, तो वो इंद्र देवता है। तो अब वही है जो बाराती है और वही बजा रहे हैं इसका, तो बैंड बाजे की तो
1: कोई
0: जरूरत है
1: जरूरत
0: ही
1: ही नहीं
0: नहीं।
1: है।
0: और बहुत खूबसूरत सी बात कि

0: बाराती बनकर बगुला आया है। अगर हम देखें तो आज बरसात होती है और अपने पंखों को ऐसे सिकुड़कर सफेद सफेद रंग के बगुले पेड़ों के ऊपर ऊंचाइयों पर जमे हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं
1: जी।
0: तो बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और हम इसे जरूर सुनेंगे।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

देखो माई, सावन दूल्हे आयो। बंदिश बंदिश के बोल और इसकी रचना, सांगीतिक रचना मन में गूंजती रहेगी जरूर। शुभा जी, हम कल फिर मिलेंगे। और श्रोता मित्रों, इसी के साथ आज रुकते हैं। नमस्कार।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। पहला गीत फिल्म रतन से जोहराबाई अंबाले वाली, इन्होंने इस गीत को गाया है। डी एन मदोक का लिखा गीत है, नौशाद अली का संगीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
4: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: हाय हाय,
7: विविध भारती पर आप इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त का गाया।

हमको छोड़ के कहाँ जाओगे।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: भूले बिस्तर गीत में अगला गीत रंगीन रातें इस फिल्म का शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें हैं। केदार शर्मा का लिखा गीत, धुन बनाई है रोशन ने।
4: मैं झोला आपको भोला, अरे तू क्या है?
5: मैं झोला।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए।
3: श्रोताओं, अब वक्त है एक अंतराल का।

शक इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में गुलजार का लिखा गीत था, तर्ज बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत सुनिए उजाला फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

स्कूल मास्टर इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में। प्रदीप का लिखा गीत है, वसंत देसाई का ही संगीत।

भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम की अब आखिरी प्रस्तुति सट्टा बाजार फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में गुलशन बावरा के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में, हम राज इस फिल्म से। साहिल लुधियानवी की रचना, तर्ज बनाई है रवि ने।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों में इशारा हो गया।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। अगला गीत रवि के संगीत से सजा साहिल लुधियानवी की रचना है, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, फिल्म का नाम वक्त।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: खयाम के संगीत से सजा मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, सुनिए फिल्म का नाम है मोहम्मद, मोहब्बत इसको कहते हैं।
5: कह दिए हो शुम्या

0: आँखों की बुझा लूं तो चले।
1: कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। मेरी सनम इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में, मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और पी नैयर का संगीत।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय।
5: जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
1: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में, शैलेंद्र के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सहेली से लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है।

सहेली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की अब यहीं संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं,

0: वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा

0: जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8

0: गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कांकरो जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कई ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ, वैसे बादल भी छाए हुए हैं, कई जगहों पर सूर्य की किरणें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन प्रकृति तो हमारे आसपास ही है, तो इस प्रकृति का मुस्कुराता आंचल आपका स्वागत कर ही रहा है। आइए ताजी हवा में गहरी सांस लें, कुछ पल योग और व्यायाम को दें और पूरे उत्साह के साथ इस नए दिन का स्वागत करें। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम चित्रलोक।

स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। एमएम करीम और केके की आवाजों में इरशाद कामिल की रचना थी। संगीत बद इस गीत को किया था एमएम करीम ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि आज है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन दोस्तों के नाम है जिन्होंने आपकी जिंदगी को मुस्कुराहटों से भर दिया। अगर किसी अपने से कोई गिला शिकवा रह गया हो तो आज उसे प्यार से मिटा दीजिए। एक प्यारा सा संदेश भेजिए या एक फोन कीजिए। समय मिले तो मिलकर आइए, क्योंकि सच्ची दोस्ती से बढ़कर कोई अनमोल रिश्ता नहीं होता। दोस्ताना फिल्म का गीत विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल की आवाजों में साथियों ने साथ दिया है। अनविता दत्त ने इस गीत को लिखा है और विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया है।

जाने तू या जाने ना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे दयाल सतीश सायोनारा दर्शना भार्गवी और साथियों के स्वरों में। अब्बास टायरवाला ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया था। अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

कार्यक्रम चित्रलोक। हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एमी मिश्रा और अनुष्का शहाणी की आवाजों में। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, एमी मिश्रा का संगीत है।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पहले

0: पेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट

द गर्लफ्रेंड फिल्म से। हिशाम अब्दुल वहाब की आवाज़ है। इस गीत को संगीतबद्ध भी हिशाम अब्दुल वहाब ने किया है। गरिमा ओब्राह का लिखा गीत है।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।

जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पीकू फिल्म का गीत, इस गीत के कलाकार जो हैं गायक कलाकार, संगीतकार और गीतकार अनुपम रॉय हैं।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना।
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
5: गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म का गीत कमाल खान और नीति मोहन के युगल स्वरों में, कौशल मुनीर का लिखा गीत है, विशाल शेखर की बनाई तर्ज पर।

श्रोताओं, आज 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। और हम आपको आगे बता देते हैं कि 10 बजे आप पिटारा के अंतर्गत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और आज सुबह 11 बजे विविधा में सृजन भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न संपादित अंश सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह, और इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान का गाया, जयदीप साहनी के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम को 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की, रूपांतर जौहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों की। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीसरा आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, जतिंदर शाह का संगीत।

कुणाल गांजावाला और गायत्री गांजावाला की आवाज़ों में अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है माय फ्रेंड पिंटो।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज आपके साथ थी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बिच धारे ना जाओ शाम पैया परू बिच धारे ना जाओ शाम।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे,

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्री।

0: एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सेटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: तो देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई, हाय मैं, ये जैसे गया।
2: हाँ।
3: अब आंखों की मनी तनम को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
2: हाँ,
3: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना।
2: हाँ,
3: डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता कर चिंता कर चिंता कर चिंता कर चिंता कर। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
2: बिल्कुल।
3: तो जैसे आपने बजाया बजाया, तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है, जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
2: जी,
3: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ। आज क्या, क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं, तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
2: नहीं आती है। जी जी जी
3: जी।
2: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था, उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
3: एक दिन।
2: अच्छा,
3: एक दिन, मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था, वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस,

0: ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11-11.30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे, 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए
1: जी।
0: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए।
1: हाँ जी।
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
1: जी,
0: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
0: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है
1: जी।
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल।
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और पेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पेमिला जी,
0: हाँ पेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए, वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर है,
1: मिलता है,
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए। तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है, मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही नो वेरी वेल कि इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तानसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत कर रहे।
1: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उस,
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट हुई, और
1: बिल्कुल सूट हुई
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, बट जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है। जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आरडी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आरडी बर्मन साहब
1: और आरडी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के बोले चंद साहब के लड़के बहुत बताओ, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए। इतने में अमित नहीं जाएगा तो उनको बोला देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी

0: तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
0: और
1: जा
0: उसके
1: सकता।
0: बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको। बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में छिपाई,
1: जी
0: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, ओ मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना दिल से दूर,
1: जी
0: और नीरज साहब के साथ मैं पिक्चर की जाना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
1: हाँ
0: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया,
1: बहुत सुंदर
0: था
1: गाना।
0: कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था।

0: मेरे नु।
1: क्या बात है,
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए, हाय हम तो सबको गले लगाए, हमें

0: जाना। तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहां जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली। माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ आपने
0: गोविंद के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा। वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रे तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे। मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर,
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं, वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन, समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी ये काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया।

0: और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी जी जी तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना इसी पिक्चर में, धीरे

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी,
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है।
0: जी जी,
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही
1: है, दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी,
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: जी,
0: जी हैं, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते सुखविंदर, बाली ब्रह्मभट,
0: अरे क्या,
1: जॉली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पेमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं।
0: जी,
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहां कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूं,
0: नहीं नहीं वो बात नहीं,
1: वो
0: रिस्पेक्ट,
1: उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट कि यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना है,
0: कला के प्रति समर्पण,
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहां से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
0: तुझे चाहना मेरा काम है,
1: जी।
0: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप सेन साहब,
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी,
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गढ़ रण त भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके ज्वाइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की।

0: और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
1: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया?
0: नहीं, मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
1: जी,
0: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, अमे की याते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे अडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी टोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
1: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वही
0: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो।
1: अब
0: नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सैन जा रहा है, या नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सैन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: जी तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते
1: हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी,
1: संगीत में रहा है।
0: जी।
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ गए
1: बेटे भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके परिवार
1: धन्यवाद।
0: को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे या 50 रागे या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या

0: जो शिवरंजनी इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
1: उसे रखिए,
0: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है, हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
1: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश।
1: मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है। जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रभावता वितस्थले वीरो विलम विलम भूतम भूतंग तुंग मार जटा टवि ज्वल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी,
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर की झपेट दिल दुष्ट को दपेट जल पेट चकला न बजे न कचरा तद न तो कटाकट की रिसे न पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की लजू है जी लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे धनी दान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारू रघुवंश को अनिया रोजन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुन दंड न उमन न सुख न कल को भूपत तो को ना वेलो अल बेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन शक्ति की रेती उमंडी खल खानी चंडी पति सो कमंडी कुल खानी दिनी कर को, ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, वो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विभूत भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह।
1: नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सृजन भारती है उसका शीर्षक है ए जिंदगी गले लगा ले। आम जिंदगी में जो तनाव होते हैं और दबाव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सब सोचते हुए आज का ये विषय रखा है ए जिंदगी गले लगा ले। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर नयन वर्मा। प्रोफेसर नयन वर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत जबरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीजों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों ये मंच और ये माइक्रोफोन।
2: नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। हम सबसे पहले डॉक्टर सुमति ओझा से हम जानना चाहते हैं। सुमति जी, बताइए कि आजकल लोग समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा करते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जैसे इग्नोर कर देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
3: आपका सवाल बहुत ही एप्ट है। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपना सिक्स पैक दिखाने बहुत आसानी से बाहर निकल के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है जी, तो उसे छिपाते हैं
2: जी।
3: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में, मानती हूँ,
2: और चर्चित
3: और मेरी फेवरेट भी है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है, मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट नीड्स, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति टू टेल और ये बताना और पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा, ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसे कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
2: बिल्कुल सही कह रही है, अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज्यादा खराब होता है, कमजोर होता है, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं और यही करियर का बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा जी हैं, तो हम

0: जिसे पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना ना पड़े।
1: इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप साइंस लेते हैं, सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं.
0: जी
1: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देर इज नो टर्निंग बैक. तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है. अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं, तो 8 9 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है, तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते तो ऐसे लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहा है. तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसकी फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए. अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए. तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है, तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहां तक पहुंच रही है, तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं. डेफिनेटली इट इज वेरी सैड पार्ट ऑन अवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की जरूरत पड़े. मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और उसके लिए अपनी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए. इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है. तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए. टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो
0: जी
1: उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए. और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए.
0: जी
1: अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज कैसे करते हैं, लेजर कैसे यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, सीटी
0: जी
1: स्कैन मशीन क्या होती है. ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते. तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए.
0: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है, तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की जरूरत है?
1: अगेन यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं, तो आपको उनका बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करना चाहिए. और अगर उनको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए. तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो
0: बिल्कुल
1: मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये डबल प्रेशर है. जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11th 12th के मार्क्स पे एडमिशंस होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे. अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में. तो ऐसा बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है. हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं. अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूं तो 11th 12th का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ है, लेकिन बच्चों को मिलते सिर्फ 18 महीने. उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन खत्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है. बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है, उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम से. वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं. तो
0: बिल्कुल
1: ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तफाक रखूंगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको.
0: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए और माता

0: पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
1: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आई एम श्योर कि काफी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल,
1: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं
0: जी।
1: जो हम बातें करते हैं जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो तो आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये दूर की बात है लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो जानते हैं कि देयर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहते हैं और मैं बच्चों की तरफ हूं बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं। वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में। देयर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर। एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
0: बिल्कुल
1: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम। वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो। तो आई थिंक समवेयर देयर इज, मतलब वो कहते हैं ना इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है। और आप कहेंगे कि द थ्री इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म, दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो। एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये जरूरी है। क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
0: जी।
1: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल्स किट है। हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है। वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है। आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते, आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते। तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है।
0: जी जी,
1: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120। किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है।
0: जी,
1: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ। बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया, ही डजंट नो कि क्यों मुझे भेजा गया है और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है। आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो। और अक्सर मैं
0: सही बात है, बिल्कुल।
1: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ
0: जी
1: कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस
0: जी।
1: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ

0: मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे, आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं, और वो नहीं बता पाते हैं।
1: क्या बात है, ये तो
0: वो सोचने लगते हैं
1: बिल्कुल।
0: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 5 इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए, तो दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं कि आपको पता नहीं ये कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है, और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है यू नो, और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है, निकल जाएगा। तो मुझे ये करना पड़ता है।
1: तो एक नई बात सामने आई है, सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, तो नयन जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे।
2: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो मैं जब तक जानता हूं मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 years plus 50 years plus प्रोफेसर हूं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मैच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे। तो मुझे उसके जैसे बच्चे बनके पढ़ाना होता है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं, डांटते हैं, उनका गुस्सा शायद 30 सेकंड का होता है, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकंड में शांत हो जाएंगे, एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई एम योर एकेडमिक फादर। तो ये मैं बिल्कुल समझता हूं और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूं, तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूं, और आई एम श्योर काउंसलर तक जो कंप्लेन जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा।
1: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां। ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर?
2: डेफिनेटली है, एग्जाम्पल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है, मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया, सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला। पापा एकदम पेट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश। इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था, तो ग्रैंड फादर और फादर हमको बोलते थे कि वैकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो, तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था, तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग। तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है। तो जो बच्चे 8th-9th में भी हैं अभी, और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है, फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है। तो आपका फियर अगर 8th-9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा, फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं, अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे, अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए। आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नयन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पे लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो, तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूं मैं। तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में, और जब आप फिजिक्स लेते हैं, तो आप तभी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, फिजिक्स इज मैथ्स, न्यूटन रोट द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन, आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज प्योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है।
1: क्या बात है, बहुत सही बात कही है, और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है वो लॉ कर रही हैं, और आए अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें।
3: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस विच इज नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ

0: रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर.
1: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज एक्चुअली एक तरह की एंग्जाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं. अब एंग्जाइटी और फियर में एक फर्क है. एंग्जाइटी एक ऐसा इश्यू है जहां, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, आप जंगल से जा रहे हैं, वहां कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंग्जाइटी कहते हैं.
2: जी.
1: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं. घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी.
2: बिल्कुल.
1: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग. ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूं, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी, उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं, और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स. तो ये एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है. आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है. आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक. मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये.
2: क्या बात है,
1: तो
2: बहुत सही बात.
1: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल. आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इम्पोर्टेंट है. और फिर ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो. एंग्जाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन. तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी, एंड कीप योरसेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड. मैं ये नहीं, प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल. तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस. और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा. ये सिर्फ 60 प्लस के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है. इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक.
2: नयन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं.
3: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ. सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है तो वो उसे होता ही नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज नॉट मोर देन 6-7 आवर्स. कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज्यादा नहीं बिठा सकते. आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें. अगर कोई बच्चा सुबह 1-2 बजे पढ़ता है तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट. तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में वो हो गए, 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए. आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए. इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल. तो मेरी हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत

0: रुकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट. वेन यू स्टडी इट आउट ऑफ प्रेशर एंड वेन यू स्टडी इट आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली आपके पढ़ने में फर्क होता है. सी एज फार एज ब्रेन इज कंसर्न, सम पीपल आर गिफ्टेड, लेट अस नॉट कंपेयर दैट वे. कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है, ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट. कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से, जैसे तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है. कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज करोगे उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है.
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं वेदांत, परिचय दे वेदांत और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछे.
2: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ. तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं. और बात आती है अपस्किलिंग, अपस्किलिंग तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं एक और नई चीज मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज ढंग से कर नहीं पाते. तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद खुद ये चीज फेस कर रहा हूँ. तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
3: आप इस जनरेशन के हो इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज एक मॉल की तरह है. हम जब छोटे थे ना तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे. आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कंफ्यूजन इज इंक्रीजिंग. लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना. लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए लेकिन आपको डिसीशन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर है. तो इसमें मैं कहूंगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है. जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए. तो आप नायन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू. पेरेंट्स से ज्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं. अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूं एज अ काउंसिलर डेस्टिनेशन जो भी हो जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए.
4: क्या बात
1: है, सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात.
3: वरना क्या हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे. और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही. उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की. जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए. और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल, तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है. तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है. तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू डोंट नो. हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना जरूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो एआई प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज अनदर डोर विल ओपन. तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट. मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया. आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा. तो दोनों नीचे देखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है. जब दो बार मांग के खाता हूँ।

0: मतलब अच्छा ही है.
1: बढ़िया.
0: नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूंगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन. छोटी छोटी बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं. उन्होंने कुछ भी किया हो, आपके लिए कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड. आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट.
1: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है. हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए. अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो एनसीईआरटी की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके.
2: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहां पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं, और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है, पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे. ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई मेंस हो, उसका बेसिक बुक ही एनसीईआरटी है. लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं. बट एज फार एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक. उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना काम डिवाइड कर लें. अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आप रोज के 40-50 कीजिए. देखिए, वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप एक मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में. अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर करते हो, 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए. एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7:23 या तो 7:24, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते. बिकॉज सीधी सी बातें, बच्चा जो दिखेगा वो करेगा. आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए. तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए. जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग. सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसिलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू नो यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता ही होता है कि एमसीक्यूज के कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस, यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग मेरे

0: में
1: बात है।
0: पैनल पे बैठे हुए हैं। 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना
1: सही
0: था।
1: बात है।
0: मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था। देर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से। आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है। आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा
1: पेट
0: मेरा
1: की
0: इंटरनल हीट
1: समस्या
0: उतना है।
1: ऑब्वियसली।
0: तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक। अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है, हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो। मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं? तो जैसे ही आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरल उसके बारे में सीखना भी होता है। इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं। तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो। एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है। वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है। मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है। आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है, ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहां बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीक करने के लिए या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंग पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया, और उसका कुछ नहीं बोलते हम। तो वो समझ जाता है, ये माइंड ऐसा है। लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन
1: जी।
3: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है
1: जी।
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है नरसिम्हा जी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ

0: आई है, वो कुछ पूछना चाहती है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिंह मोहन जी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे, सुमति जी से, कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
0: हिंसा
1: हिंसात्मक हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं, और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी। तो ढूंढकर जब तक होता है, तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
0: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत मतलब रोड पे भी दिखेगा, आपको रोड रेज जिसे कहते हैं। इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वॉट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, कि वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है। इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है, और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
1: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली, चूंकि सब जगह अब कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजे, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए, या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं, तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
0: मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहां टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है, और इनको काउंसिलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजकर मदद लेना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू। क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना इजी नहीं है, और ये
1: बिल्कुल
0: फिर नारकोटिक सेल तक जाता है, और कॉलेजेस चाहते नहीं है कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल के लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहां पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूं, द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट। तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है,
1: जी
0: और
1: जी
0: वहां वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही। दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं।
2: मेरा नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलिडे पे जाते हो, तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग?

0: उठाकर या फिर कुछ देयर इज सम प्लानिंग. कितना प्लानिंग करते हो आप, वहाँ वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो. अम्ब्रेला की जरूरत है, स्वेटर पहनना है, डबल लेयर पहनना है, कितना पूछते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वांट टू प्लान. तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है. है ना, कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है. और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूँ,
1: बिल्कुल,
0: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह. वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल,
0: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इयर्स. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो. ये जो फोन है ना, इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो. इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ. सुबह उठ के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो. स्टीव जॉब्स करते थे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है. बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है. तो आपके पास ये भी माइंड सेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं. बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको.
2: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है. इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज मैं 7 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है. क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूं, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूं, तो आई हैव टू बी माई ओन एडवाइजर. तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीजें मोबाइल में स्टोर करते हैं, नोट्स करके मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है. और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो. मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसके बाजू में स्माइली करता हूं कि नयन वेल डन. वैसे आप अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे. तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, राइट. यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड. घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आप को स्माइली दो. हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है. हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही. एंड मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग. मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूं कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाय स्टूपिड पैटी थिंग्स इन लाइफ.
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है. तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
3: मेरी बेटी है, 6 साल की है. सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब. बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग. ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उससे झूठ बहुत बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में. वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत. तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर. क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना. वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके. मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल. तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ. जैसे उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है. कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप.
0: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, पूछते भी नहीं है.
1: वो ज्यादा मुश्किल है.
0: सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहां

0: बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है, तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी। बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए। भूत है ये डराना ये सही नहीं है,
1: बिल्कुल, वो
0: क्योंकि
1: मुझे भी
0: आपने
1: लगता
0: देखा
1: है।
0: नहीं है भूत
1: हाँ
0: को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है ना।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है, लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है आई वुड से बी ऑनेस्ट,
1: ऑनेस्ट।
0: बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए, उतना ही दो जितना वो समझ सके। एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग। वेरी गुड।
1: बिल्कुल।
2: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती। अभी जो बात चल रही थी उसी से जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है।
0: डेफिनेटली,
2: हाँ, तो उसकी
0: इसलिए
2: उनके पेरेंट्स की
0: उसकी
2: काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
0: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है, वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
2: अच्छा, हाँ
0: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि
2: जी जी
0: उनके घर पर कौन कौन है,
2: हाँ
0: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं, कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन,
2: जी
0: तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है।
2: ओके
0: और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है, और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। आई कांट क्रिएट अ वॉर बिटवीन हस्बैंड वाइफ आफ्टर काउंसलिंग सेशन,
1: जी ये बहुत
0: यू
1: सही बात कही
0: नो दैट्स नॉट
2: आपने।
0: पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकेंड सेशन आए,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: माई चैलेंज इज गेटिंग देम फॉर द सेकेंड सेशन। पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ
1: क्या
0: कि
1: बात
0: वही
2: है,
0: सजेशन देते
2: वाह।
0: हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग।
1: जी, एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा।
3: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। नाउ आई एम इन सिक्स स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर
1: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे। कहिए नयन सर, बताइए, आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है।
4: भले आज मैं टीचर हूं, लेकिन मेरे भी दो तीन नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। मुझे सिविक्स कभी पल्ले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स आते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो, तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसका जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है। तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी। यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो। ओके
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है। अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी, अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
5: भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया
1: शुक्रिया।
5: सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूं तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊं, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है,
1: क्या बात
5: इतना
1: है।
5: सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
1: क्या बात
5: और
1: है, वाह।
5: आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर

0: बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में। आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूं।
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: टीचर
1: वाह।
0: ने बोला, तुम्हें सवाल समझ नहीं आया? तो बच्चे ने बोला, आपको जवाब समझ नहीं
1: क्या
0: आया।
1: बात है, वाह वाह वाह।

0: तुम्हें सवाल समझ नहीं आया? तो बच्चे ने बोला, आपको जवाब समझ नहीं
1: क्या
0: आया।
1: बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल, जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: हम नाराज होते हैं, हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है। नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है। हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने यह किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी,
1: जी
0: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी। और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोजा कह रही हैं कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते
1: जी,
0: कि
1: जी.
0: बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं? तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी जी
0: तो भगवान ने बोला, हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है, बहुत
0: अगर
1: बढ़िया।
0: वो समझदार है तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया विभा
0: शुक्रिया।
1: जी, अब वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉ सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदेव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार, कीजिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा

साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओतप्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है।

0: हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज में दोस्ताना फिल्म का गीत। अन्विता दत्त गुप्तन ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।
3: जाने नहीं

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी है। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं, उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारे एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत

आपने सुना, इसका जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं,

कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ा

0: आई करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक एक समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पर,

फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं जब आपको सोना है रात के समय में, फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन, विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुँचाएं। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ मार कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे।

साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तब शब्द भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है, जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूँ, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: रोग लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना

चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4th स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से

0: भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान

0: की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक

0: साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैराशॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

उड़न खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों

0: की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन, आई राधे जमुनक तट पर, जमुनक तट पर नीरत करत उठ, नीरत करत उठ, हिरत फिरत उठ, हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन, दिग्दिगना दिग्दिगना दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो राम तत तई, राम तत तई, राम तत तई।

Thank you.

0: तुम सा नहीं देखा।
1: इस गीत के साथ ही अब सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे
1: गीत। मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत।

तो फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

तो ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार। शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्शलायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफ़र था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके ख़तों का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा, तो अपने ख़त भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन ख़तों के ज़रिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: أشهد أن لا
1: शहनशाह बहादुर शाह जफर की खिदमत में गुलाम बख्त खां कोर्निश बजा लाता है।
2: नहीं नहीं, बख्त खां आप गुलाम नहीं हैं, आप तो मुल्क के सिपह सालार हैं। इस बदनसीब बादशाह बहादुर शाह जफर की उम्मीदों की आखिरी किरण।
1: शहनशाह का इकबाल बुलंद रहे, हम और हमारे तमाम सिपाही जो कुछ भी हैं आपकी ही बदौलत है। जजाक अल्लाह, ऐसे नाजुक माहौल में भी आप अशार इरशाद फरमा रहे हैं।
2: कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं बख्त खां,

0: जिनके जख्मों से बहते लहू की रफ्तार दम तोड़ने लगती है, फिर ये जख्म रिसना शुरू कर देते हैं और इंसान अपने आप को बेहिरासा पाने लगता है, और तब तब यही रिश्ते जख्म दिल को जुबान बनाकर अशार कहने की ताकत अता कर देते हैं।
1: बजा फरमा रहे हैं जहां पना, जान की अमा पाऊं शहंशाह, अशार और वो भी ऐसे वक्त में।
0: हाँ हाँ वक्त, हाँ अशार की आमद ऐसे ही वक्तों में होती है। हमारी कमसिनी में मौलवी साहब की बयान की हुई एक बात याद आ गई। कुछ इंसान अपने आप को चौतरफा अंधेरों मुश्किलों मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं, तो उनसे नजात पाने के लिए उनका कल्ब बिलबिला उठता है, वजूद थर्राने लगता है, सांसें चीखों में बदल जाती हैं, रोशनी रोशनी इन्हीं चीखों के सोतों से निकलते हैं अशार।
1: सरे तस्लीम खम है मेरे आका, मगर मेरे सरकार ये वक्त टूटे हुए दिलों की बदकिस्मती पर मातम करने, आंसू बहाने या ना महरूमियों का नहीं, बल्कि दिलेराना हिम्मत और नए ताजा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
0: आंसू बहाए नहीं जाते वक्त खां, ये तो खुद ब खुद बहने लगते हैं। खैर छोड़ें इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
1: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
0: तो फिर इंतजार किसका है, जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
1: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
0: क्या कह रहे हैं बख्त खान?
1: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
0: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के बीहड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
0: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है अलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
0: माँ बदौलत को अपने सिपाही सालार पे यकीन कामिल है, आप जो भी चाहें करें लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादा जान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
1: अब आप ही फैसला फरमाएं।
0: किस बात का फैसला बेटे?
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
0: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
1: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
0: अपने अपने घर।
1: मगर क्यों?
0: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
1: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।

0: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा जल देंगी।
1: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
0: दादी जान।
1: खाना कौन खिलाएगा?
0: दादी जान।
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगी?
0: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
1: आप? दादा जान।
0: हाँ।
1: आप?
0: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
0: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
1: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यहीं खत्म करें।
0: हाँ।
1: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
0: लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं?
0: हाँ?
2: रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेशकीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी, मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
2: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों को खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा है सामने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में

0: उतार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादर वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों, पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे, हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे आलीजा, इस मादरे वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
2: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तिला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन? लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जहा? मकबरे में पनाह लेने वाला आली जहा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसो लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेष बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने

0: हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
1: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
0: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
1: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
0: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
1: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
0: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की माथहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
1: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
0: उस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
1: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
3: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
1: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा, इलाही बख्श तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
1: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
0: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
1: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
3: वो आ गए।
1: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
0: फिरंगी, मैं देखता हूं।
1: मलिकाए आलिया,
4: मेरे सरताज,
1: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
4: बख्त खान को बुलवाएं।
5: बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हट।

0: सन आया है।
1: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था
0: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
1: मत कर, इलाही बख्श।
0: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम, और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
0: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
0: इज्जत, मर्डर का इज्जत। तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
0: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। Do you know, बादशाह? तुम जानता है, मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया, और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
0: आई नो हम हेटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
2: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है? क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में?
1: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाए। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर, हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ़ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फाफिया पड़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं।

तोहफा। अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थीं चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम, भूमिकाओं सहित

0: इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो।

0: कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के उजाले उनकी यादों के

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर
1: है।
2: मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बम्बई में हाजिर हो गई,
1: हाँ,
2: फिल्म क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बम्बई, तो बम्बई आना लाजमी था, तो बम्बई पहुंच गई और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहां दामू झवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुळकर ने किया मराठी अनुवाद, तो एनीवे वो मैं कर रही थी। लेकिन उसके पहले बम्बई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड,

0: जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज से खाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी। और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई, तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास। ओम तो स्ट्रगलर स्मिता बिचारी नहीं नहीं आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद।
1: वाह वाह।
0: स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं। और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये चार फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ वो, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें कहा दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सई ने तो मुझसे बात की थी, मैंने कहा बात तो सच है मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष औसट करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता, तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे। तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो, तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, and that was it, that was the last conversation we had। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं, और एक दिलचस्प बात यह कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं धुआं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो है अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहाँ चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक तिलस्म है।
1: क्या बात है, क्या बात है। परसों

0: मुझे एक पुरस्कार मिला
1: जी, जी गौरव अवार्ड
0: जी
1: उसकी बधाई भी देनी बाकी है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी नहीं, तक बधाई
0: नहीं, कोई
1: नहीं,
0: कोई बात नहीं। तो वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
1: वाह वाह वाह।
0: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए, तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बदूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की, अच्छी अच्छी, ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हाँ चश्मे बदूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की है दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन नहीं, लोग नहीं भूलने देते है, कहते हैं। और सच कहूं तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा से किस्सा सुनाती हूँ कि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें बीआर चोपड़ा थे, जिन्होंने मेरी पटक कथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कम्प्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया, क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे, वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
1: क्या बात है,
0: गुल आनंद भी वहां थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कहके उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क, हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेली फिल्म कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च डाला
1: जी।
0: अच्छा,
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा। इसे जरूर, तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो

0: आज तारीख ये है, करेक्ट एक महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी हवा खुश। मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। तो, लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई मैं चार पांच दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदलना था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए उसमें भी, गुल का काफी ये था
1: योगदान, कंट्रीब्यूशन,
0: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था।
1: अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी,
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहाँ भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने। अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो रवि को बेचारे को 3000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन कहाँ से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी, गमन मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर, और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर वेन ही वॉज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और बहुत, वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे हाँ, कथा में हाँ, नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रिमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फंसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया, तो क्या रोल किया सईद ने। हाँ, बहुत बहुत ही मजा आ गया, एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन। बहुत
0: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है ना? तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट।

0: टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशन लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटिफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह से हाँ, वो किचन
0: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया। दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं, जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
0: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
1: जी, वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
0: कभी जीनत अमान का आता है
1: जी,
0: है?
1: जी,
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
1: जी,
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा में,
1: मैंने तो हाँ कह दी,
0: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे,
1: शीशा हो या दिल उसमें तो जो दीप्ति लगी है
0: वो बहुत अच्छा किया ना उसने, बहुत सुंदर किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
1: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना आ जा
1: तीसरी मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
1: जी,
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है, सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल ये सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है,

0: उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
0: जी।
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई, हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहां तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के, उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बम्बई राजकमल में। हाँ
0: जी जी,
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है नहीं, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है, मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर से, एकदम पूरा रील का रील बाहर, तो शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए, फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले फिर बॉम्बे लैब में, तब थे खन्ना साहब का
0: जी,
1: वेरी वेरी नाइस कॉडिस्ट, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आइए, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा, और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो, मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वाज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा, वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यो क्या त्यो क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आईना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव, और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे

0: ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या, कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना। इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है, क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ, कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करे, वो दोनों बहुत मायूस है। और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, वो होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई। कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं, वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया, और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नई बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये ले लो ना। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए ये भी कह के आगे गई, यू नो। और फिर वो सारा जुमरी तलैया वगैरह ये सब डाला, और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहाँ इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में, तो यूं तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, क्या बहुत खूब।
1: तो क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल, इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ, गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को, वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ, और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी, एक काली सी, तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते
0: जी, क्या बात।

0: ले जावे
1: चकित भये सगरे मगरे काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े।
2: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
3: हाँ।
2: ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजे ही गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
3: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
2: जी,
3: तो
2: आंसू बह रहे हैं उसके। हाँ, और पूरा माहौल आप बनाते हैं उसमें।
3: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
2: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
3: हाँ, वो भी अगेन वही बात।

0: बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं,
1: बिल्कुल
0: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या, मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं, और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, हाँ। वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं,
1: बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल।
0: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल, तो ये गाना इस अच्छा। इंटरव्यू में प्यार लगावट
0: भी सुनोगे? ओके।

0: एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली,
0: जी नामावली, जिसमें वो एनिमेशन वगैरह है जी।
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली,
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आपने देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। तो वैसे उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल, दसवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
1: क्या। और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल।

0: ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना, ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ।
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
0: जी बिल्कुल। हाँ
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना,
0: हाँ,
1: इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर,
0: हाँ,
1: मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया
0: हाँ
1: बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।

0: वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया हाँ। बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: हाँ, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
0: कोई टकराव होता था?
1: बहुत बार बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: धुआं धुआं से एक ख्वाब को हमने मचलते देखा है, एक चांद को जमीन पर चलते हमने देखा है। कतरा कतरा पिघली थी जब चांदनी, उसे तुम्हारे रूप में ढलते हमने देखा है। आंखों के काजल से खींची हैं ख्वाबों की लकीरें, लबों की सुर्खियों से रंग भरे हैं ख्वाबों में। तूने यादों के मौसम को सजाया है इस चिलमन में और लिख दिया है मोहब्बत दिल की मीनारों पर।
1: ये जो चिलमन है

सितारों की रोशन रात है, दामन में खिले हैं फूल बेहिसाब, नूर की बूंद है तू या है मुजस्सिम चांदनी, आफताब की किरण है या है मोहब्बत की रोशनी, आंचल तेरा महकता साया, संगमरमर की है तेरी काया, तेरी पलकों की साए में दिल को पनाह मिलती है, जब उतरती है तुम्हारी यादें दिल के आंगन में तो धड़कनों में कई हसरतें पलती हैं, पैरहन का अंदाज तुम्हारा जैसे चांद ने ओढ़ी हो चांदनी, जैसे तुझ में सारा नूर सिमटाया, दूर उस मोड़ पर जब भी नजर आती है तू तो दिल कह उठता है लो चांद निकल आया।

बादलों पर चलकर, चांद में ढलकर, एक हुस्न मेरे सामने है, आफताब में नहाया हुआ सा, कुछ कहकशा में समाया हुआ सा। न जाने कब से इन नजरों को ख्वाहिश थी तेरे रूबरू दीदार की, न जाने कब सी हसरत थी तेरे हर अंदाज को पलकों की झालरों में समेट लेने की। तेरी उम्मीद मेरी जिंदगी है, तेरी आरजू मेरा अरमान है, तू खूबसूरत तस्वीर है मेरी मोहब्बत की। हाँ ये सच है, तू ही मेरी जान है।

0: अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो तेरी एक याद पुरानी, जैसे हो चांदनी रात सुहानी। वो तेरे मेरे प्यार की बातें, जैसे हो कोई परियों की कहानी। कुछ ख्वाब सुनहरे, कुछ वादे पक्के, तेरे साथ चलने के इरादे सच्चे। संजोकर साथ ले जाऊं तेरी सारी यादें। तुम चली गई हो जब से, तन्हा है हर मोड़ मोहब्बत के रास्तों का, मेरी हसरतों का, मेरी जज्बातों का। मेरी ख्वाहिशों में तेरे अरमान जिंदा रहेंगे सदा। तेरी महफिल में मैं रहूं ना रहूं, तेरे साथ रहेंगी सदा ये मेरी वफा।
1: तुम अगर

अगर कभी चांद को देखकर मेरी याद आ जाए तो बस एक कतरा मुस्कुरा देना, मैं वहीं कहीं मिल जाऊंगा, सितारों की चमक में, ठंडी हवाओं की झुवन में, रात की खामोशियों की सरगम में, हर पल तेरे एहसासों के समंदर में। जब भी तेरी आंखें आसमान को तलाशेंगी, मैं किसी टूटते तारे की दुआ बनकर उतर आऊंगा। जब भी तेरा दिल तन्हा होगा, मैं तेरी धड़कनों में एक मीठी सी सदा बन जाऊंगा। चांद की चांदनी, सितारों की रोशनी हर रात तेरा पता बताती रहेगी। तू बस सदा मुस्कुराती रहना, मेरी मोहब्बत तुझे हर पल गले लगा।

लब खामोश हैं, मगर निगाहें सब कह जाती हैं। तू सामने होता है तो मेरी धड़कनें मुस्कुराने लग जाती हैं। कितनी ही बार चाहा कि तुझसे सब कुछ कह दूं, मगर हर बार मेरी शर्म मेरी मोहब्बत से जीत जाती है। तू पूछे तो कह दूं तुझसे, मेरी हर दुआ में तू शामिल है, मेरे हर ख्वाब की पहली सुबह और हर रात की आखिरी दुआ भी तू ही है। मैंने तुझे चाहा है बिना किसी शोर के, जैसे चांद चुपचाप रात को रोशन करता है, जैसे खुशबू बिना आवाज के फूलों में महकती है। अगर कभी मेरी आंखों में देखोगे तो अपना ही अक्स पाओगे, मेरी हर मुस्कान के पीछे बस अपना ही नाम गुनगुनाता पाओगे। ना कोई वादा, ना ही चांद सितारों की सौगात, बस इतना ही चाहता है दिल मेरा, जिंदगी भर जलता रहे मेरे दिल में तेरे प्यार का दिया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने लेके हम हाजिर होंगे थोड़ी ही देर में।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। सभी सुनने वालों को मित्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करते हैं दोस्ती से भरे इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरल में

0: बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उभर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए ये संदेश।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, भाग दो, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की विशेष जयमाला में आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। शाम 7 बजे आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित कृष्णा नाइक सोनावने की शौर्य गाथा, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सात बजकर 45 मिनट पर सुनिए इंद्रधनुष में साज और आवाज, इसमें सुनिए सुनील गंगोली का गिटार। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटक अदाकार, लेखन लक्ष्मीकांत शर्मा, निर्देशन FC माथुर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार जयदेव पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और रात्रि 11 बजे कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर, कल प्रसारित होगा भाग 269। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार है गायिका शुभा मुद्गल, भाग तीन, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे, 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9:30, कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार शकील बदायूनी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्मभूषण सई पराजपे से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे, यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजा अध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने, शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे, 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है जवानी दीवानी।

हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त, लेखक सुरेंद्र कुमार तिवारी, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार शकील बदायूनी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छह गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने लगान फिल्म का गाना सुना, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में गीत जावेद अख्तर का था। आइए अब सुनते हैं बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री को। गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत MM करीम का।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला को लेकर संगीत सरिता कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं शुभा मुद्गल जी के साथ। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और फिर से हम उसी घटा और बदरिया में खो जाने के लिए उत्सुक हैं। कल आप बात कर रही थी शुद्ध मल्हार की, और उसी समय आपने ये भी कहा था कि मेघ मल्हार भी कहा जाता है।
1: जी,
0: तो ये राग मेघ और मल्हार दो अलग चीजें हैं या दोनों एक ही राग है, या ये इसका क्या स्वरूप है?
1: अक्सर ये माना जाता है कि मेघ और मेघ मल्हार को एक ही राग मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघ पृथक है, मेघ मल्हार पृथक है, और चूंकि ये कार्यक्रम बहुत से लोग सुन रहे होंगे, गुणीजनों से तो मैं क्षमा मांग ही लूं कि यदि कुछ ऐसा कह दिया जो जिसमें त्रुटि है, और संभव है, संभव क्या मतलब वास्तव में त्रुटियां होंगी ही, तो उनसे मैं पहले से क्षमा मांग लूं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद संगीत सीख रहे हों, उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुमुख से तो ये सीखा जाता ही है, साथ में अन्य बहुत ऐसे शोध करने वाले लोग रहे हैं, शोध करता रहे हैं, जो कि जिन्होंने मल्हार पे बहुत अच्छे ग्रंथ हाल फिलहाल में भी लिखे हैं। एक ऐसा ग्रंथ है डॉक्टर गीता बैनर्जी द्वारा लिखा हुआ मल्हार दर्शन के नाम से, उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि मेघ और मेघ मल्हार किस तरह से पृथक हैं। मेघ जो है वो प्राचीन रागों में माना जाता है, और इसमें ये ऐसा भी डर रहता है कई बार कि इसमें जो स्वर प्रयोग में आते हैं तो वो कई बार मध्माद सारंग के आसपास भी चले जाते हैं।
0: जी,
1: दूसरी बात ये कि उसमें मेघ मल्हार में दोनों निषाद भी लगाए जाते हैं। फिर मेघ में आंदोलित ऋषभ जो म का एक कण लेके आता है वो बहुत आवश्यक होता है, उससे मेघ की पहचान बनती है। लेकिन ऋषभ पे आप रुकते नहीं हैं, प्रायः आप म रे प कह के वो जो स्वर संगति जो मल्हार का एक प्रतीक है उस पर आप चले जाते हैं। तो मेघ और मेघ मल्हार बिल्कुल अलग माने गए हैं, और उनकी अलग अलग बातों पे बहुत चर्चा रहती है, मतभेद भी रहते हैं, लेकिन हमें जो सिखाया गया है उसके हिसाब से मेघ अलग और मेघ मल्हार अलग है।
0: मेघ मल्हार जब प्रस्तुत होता है तब वो मेल बनाना भी बहुत मुश्किल होता होगा।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसने बंदिश गढ़ी है उसने किसी एक पक्ष को शायद ज्यादा महत्व दिया हो, तो उसके हिसाब से भी

0: ना पड़ता है, यानी मेघ मल्हार की जो शक्ल आपको बताई गई है उसको तो ध्यान में आप रखते ही हैं, साथ में उस शक्ल को भी ध्यान में रखते हैं जो कि रचनाकार ने दी है, जो वाग्यकार ने बनाई है। क्योंकि हर यही तो हमारे संगीत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। आप एक ही राग को अलग अलग लोगों के अनुभव से देख सकते हैं।
1: ये अपनी अपनी प्रतिभा का आविष्कार होता है। जैसे मेघ मल्हार का हम चलन भी सुनेंगे, और जो बात आप कह रही थी कि आंदोलित ऋषभ म का कर्ण लेकर आता है, वो भी तो समझाइए ना।

0: वाह वाह। लेकिन जब केवल मेघ गाया जाए तो उसका चलन भी तो अलग होगा। आप जो बंदिश सुनाने वाली हैं वो मेघमल्हार में है या मेघ में?
1: जी, मैंने मेघ की एक बंदिश आज प्रस्तुत करने के लिए चुनी है
0: जी,
1: और इसका साहित्य मुझे बहुत मजेदार लगा।
0: साहित्यिक पक्ष तो हमें ढूंढना ही है इसका।
1: देखिए क्या इसमें कहा गया है। देखो माई, सावन दूल्हे आयो।
0: सावन को दूल्हा के रूप में। हाँ
1: तो इसे देखिए क्या धूमधाम है दूल्हे की।
0: जी,
1: देखो माई सावन दूल्हे आयो, चार मास को लग्न लिखायो। तो आपकी जो चौमासे की बात थी, आपके जो कार्यक्रम का शीर्षक है उसकी भी बात आ गई।
0: हाँ।
1: कि ये 4 दिन की ही प्रीत है, 4 मास की ही प्रीत है। तो 4 मास को लग्न लिखायो।
0: हाँ।
1: क्योंकि उसके बाद तो फिर हेमंत ऋतु शिशिर इत्यादि सब आ जाते हैं। तो 4 मास को लग्न लिखायो, बदरन अंबर छायो, बिजरी चमके बगला बराती। जो पक्षी होता है वो बारात में आया है। बिजरी चमके बगला बराती, कोयल शब्द सुनायो, दादुर मोर पपैया बोले, इंद्र निशान बजायो। तो बैंड की कोई जरूरत नहीं है।
0: इंद्र महाराज जो इंद्र ही को ये प्रतीक रूप में माना जाता है और ये कहा गया है कि बरसात के या वर्षा के जो स्वामी हैं, देव भगवान जो कोई देवता है तो वो इंद्र देवता है।
1: जी,
0: तो अब वही है जो बाराती है और वही बजा रहे हैं इसका, तो बैंड बाजे की तो जरूरत,
1: कोई जरूरत
0: है ही
1: नहीं है।
0: और बहुत खूबसूरत सी बात कि बाराती बनकर बगुला आया है। अगर हम देखें तो आज बरसात होती है और अपने पंखों को ऐसे सिकुड़कर सफेद सफेद रंग के बगुले पेड़ों के ऊपर ऊंचाइयों पर जमे हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं।
1: जी,
0: तो बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और हम इसे जरूर सुनेंगे।

देखो माई, सावन दूल्हे आयो, बंदिश बंदिश के बोल और इसकी रचना, सांगीतिक रचना मन में गूंजती रहेगी जरूर। शुभाजी, हम कल फिर मिलेंगे। और श्रोता मित्रों, इसी के साथ आज रुकते हैं। नमस्कार।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य।

फौजी साथियों, सरजमीन हिंदुस्तान की सरहदों के निगहबान हमारे फौजी साथियों की जाबाजी को हवाएं सलाम करती हैं। ये वो बेखौफ कदम हैं जो दुश्मन की जानिब जब बढ़ते हैं तो उनकी धमनियों में रक्त को जमा देते हैं। जंग के शोलों में दुश्मनों को हलाक करते भारत माता के ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में फतेह की तारीखें लिखी। विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आज फौजी साथियों हम सलाम करते हैं माँ भारती के होनहार सुपूत नायक कृष्णा सोनावणे को, जिनका ताल्लुक वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र से है। ये देश का एक ऐसा प्रांत जिसके रणबांकुरों ने दुश्मन की मांद में घुसकर उन्हें ऐसी शिकस्त दी कि आज भी इनके खौफ से दुश्मन थर्राता है और दांतों तले उंगली दबाता है। शत्रु की आंख में आंख डालकर इस भूमि के होनहार सपूतों ने न जाने कितनी ही बार युद्ध की बाजी जीती जो इनके लहू में शुमार है। प्राचीन काल में महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि को दंडकारण्य, अप्रांत, फिर राष्ट्र, राष्ट्रिक और महारठ, विदर्भ, मूलक, अस्मक और कुंतल जैसे नामों से जाना जाता था। कालांतर में भी अपने महान राष्ट्र की अस्मिता को बनाए हुए योद्धाओं के रूप में ऐसे मोती हुए महाराष्ट्र में जिनकी चमक से ये प्रांत आज भी जगमगाता है। आज भी दुश्मनों पर वही खौफ तारी है जब किसी जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी मालुसारे, बाजी प्रभु देश पांडे, छत्रपति सांभाजी महाराज, संताजी घोर पड़े, बाजीराव बल्हाड़, चिमाजी अप्पा, मल्हार राव होलकर की आंधी की तरह आती सेना के सामने शत्रु तिनके की तरह बिखर जाते थे। ये वो मराठा थे जो सिंह सी गर्जना से दुश्मनों के गढ़ में भगदड़ मचा देते थे। मुगल सेना के लहराते परचम को धूल में मिलाते हिंदवी स्वराज की स्थापना की नींव रखी, मौत भी जिनसे खौफ खाती थी। महाराष्ट्र की माटी के धाकड़ सिपाही नायक कृष्णा सोनावणे, जिनका बचपन शूर वीरों के लहू में रची इसी माटी में परवान चढ़ा। जहां एक तरफ कृष्णा सोनावणे का खिलक्कड़ स्वभाव, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की हुकूमत के साए बीतते सुबह शाम और बोझिल रातों ने उन्हें कब संजीदा बना दिया ये उन्हें भी पता न चला। सरेआम बरतानिया हुकूमत के घोड़ों की टापें सहमे सहमे से वो लोग और किसी दम भी बेवजह पकड़े जाने का डर। उम्र परवान चढ़ती गई और किशोर कृष्णा सोनावणे देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने दिल में पालते रहे। और हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ की वो माटी जो कभी वीर छत्र

छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सेनानियों, युद्ध की चुनौती देते उनके जंगजू, मराठा सरदारों की निकलती सेना से उठते गुबार में रंगा, देशभक्ति के रंग में नहाया। रायगढ़ ही इनका पैतृक गांव था। जब जननी जन्मभूमि के रंग में सिंह की सी गर्जना और दहाड़ हो तो ऐसे सेनानी की शेर दिली का कहना ही क्या।

बचपन से कृष्णा सोनावणे के लहू में मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम और धीरे धीरे इसी में अपने जीवन और कर्म की भूमि को तलाशना ही मकसद रहा। वो सब भी आंखों के सामने गुजरता गया जब देश की स्वतंत्रता की खातिर देश के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान का सिलसिला अपने शबाब पर था। चाहत बस इतनी कि हर कीमत पर देश में आजादी का परचम लहराए। इन्हीं परिस्थितियों में किशोर कृष्णा ने रायगढ़ के कुड्डपन से अपनी पढ़ाई पूरी कर बड़ी छोटी सी उम्र में भारतीय सेना की पहली महार रेजिमेंट में बतौर सैनिक चुन लिए गए। समय की क्या चुनौतियां हैं।

ये कृष्णा सुनावणे अच्छी तरह से जानते थे। समय ने करवट ली और देश आजाद हुआ। ये आजादी बेशक बड़ी थी, लेकिन चुनौतियां भी कदम कदम पर थीं। देश में एक तरफ खुशी की लहर थी तो दूसरी तरफ अपनी ही मातृभूमि के दो टुकड़े होते देख दर्द के आंसू भी छलक रहे थे। जब घर परिवार अपने वो आंगन जिसमें कभी बचपन खेला, वो शहर वो गांव जिसकी गलियों में दोस्तों के साथ खेले, तो कहीं भाई भाई से जुदा हो गया। घर जमीन के साथ साथ लड़कपन भी वहीं रह गया। यहाँ तक कि मवेशी भी बांट लिए गए और रह गई तो बस एक टीस और अपने ही घर के दो टुकड़ों की यादें।

आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सोनावने की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सोनावने की शौर्य गाथा। इस बंटवारे के बाद भारत से अलग हुए राष्ट्र की रंजिशें और नाफरमानियां दिनों दिन बढ़ती गईं, जो जम्मू कश्मीर के इलाकों में खासकर देखी जा सकती थीं। भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में ऐसी गतिविधियों को साफ देखा जा सकता था। इन इलाकों में घाटियों के रास्ते, घने जंगलों की आड़ में छुपकर दुश्मन सैनिकों के रेंग कर घुसने और वारदातों को अंजाम देने के सिलसिले आम हो चले थे। इनकी नापाक हरकतों को रोकने के मद्देनजर आजादी के तुरंत बाद ही भारतीय सेना की गश्त बढ़ा दी गई। और अलग अलग जगहों पर सेना मुस्तैद हो गई। वर्ष 1947-48 में टिटवाल, कुपवाड़ा, मेंढर, नौशेरा और यहाँ तक कि गुलमर्ग की शांत वादियां भी रह रहकर कबायलियों के भेष में छुपे दुश्मन सैनिकों का निशाना बनने लगी। शत्रु सेना के ये हमले और रह रहकर होती घुसपैठ ने शत्रुओं के इरादों को जाहिर कर दिया, जिसे समझने में भारतीय सेना के आला अफसरों को देर न लगी। सरहद पर भारतीय सेना की तीनों यूनिट की गतिविधियां बढ़ा दी गईं, जो एक दूसरे को कवर देती मुस्तैद थीं। इस शक को यकीन में बदलते देर भी न लगी कि दुश्मन ने धावा बोल दिया है। अक्टूबर की बढ़ती ठंड और सन 1947 का वो दिन जब भारतीय सेना ने भी इस थोपे गए युद्ध की आधिकारिक पुष्टि कर दी, भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों पर भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट तेजी से होने लगी। इसी समय जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके नौशेरा में भी दुश्मनों की चाल को आंकते हुए इस बेहद संजीदा अग्रिम चौकी पर एक महार रेजिमेंट के धाकड़ और बेहद तजुर्बेवान अफसर नायक कृष्णा सोनावने को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर रवाना किया गया, जो अपनी काबिलियत और हुनर से सेना में आला अधिकारियों के बीच एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। फतेह जिनकी पहचान थी और पीछे हटना जिन्होंने कभी सीखा न था।

नायक कृष्णा सोनावने ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ कश्मीर के नौशेरा का रुख किया। वतन की जानशीनी और जीत से कम कुछ भी नहीं, ये कॉल और यही इरादा अब दिल में था। न सर्द हवाओं का फिक्र, न बर्फीली चट्टानों का डर, अपने अंदर शेर का जज्बा और वतन की आन का वास्ता लिए इस जत्थे की अगुवाई करते नायक कृष्णा सोनावने नौशेरा की चौकी पहुंचे, इस इलाके का जायजा लिया। ये इलाका शत्रुओं की पहुंच से काफी दूर भी नहीं था और ये चौकी दुश्मनों पर निगरानी के मद्देनजर बेहद अहम थी। जंगी हवाओं के रुख को देखते हुए नायक कृष्णा सोनावने ने 7वीं बटालियन की एमएमजी पोस्ट पर अपने साथी सैनिकों के साथ पोजीशन पहले से ही ले रखी थी। एक महार रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों ने इस दुर्गम इलाके में एक दूसरे को कवर देने के लिए जो रणनीति बनाई उसे अमल में लाते हुए कुछ बंकरों में, कुछ खाई में तो कुछ पथरीली दीवारों के पीछे आड़ में रहे। इस बात की पूरी तस्दीक नायक कृष्णा सोनावने ने की कि जंग के मोर्चों पर शत्रु की ताकत को बेदम किया जा सकता है और उसी लिहाज से प्लान ऑफ एक्शन को रेडी कर लिया गया। दिन के सन्नाटे में कभी यूं भी लगता था कि कहीं कुछ नहीं, तभी इसी सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाज वादियों को दहला देती। चाक चौबंद भारतीय सेना की ये 7वीं एमएमजी पोस्ट और इसके जाबाज सिपाही इन गोलियों का जवाब कुछ इस अंदाज में देते कि दुश्मन अपने इलाके भागकर छुप जाता। कुछ घंटों की अफरा तफरी के बाद शत्रु खेमों से आते बारूदी गोले और मोर्टार्स नौशेरा की वादियों को झकझोर देते तो इधर एक महार रेजिमेंट की भारतीय टुकड़ी के सिपाही भी अपनी मीडियम मशीन गन्स का मुंह

देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती, पर जंगी शोलों का गुबार दिन ब दिन बढ़ता ही जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के मद्देनजर शत्रु को कोई मुकम्मल फायदा हो सके, ये इतना आसान भी न था। अब जो

0: आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सोनावने की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सोनावने की शौर्य गाथा। हमारे भारतीय जवानों की निगाहें 24 घंटे सतर्क थीं। नायक कृष्णा सोनावने बड़े धैर्य और बेबाकी से पूरी निगरानी रखते हुए अपने सैनिक साथियों की हौसला अफजाई करते, अपनी रणनीति के तहत उन्हें बाखबर करते। रात होती और सन्नाटा फिर पसर जाता। ये सन्नाटा तो एक धोखा था। इसी रात के साए किसी भी पल दुश्मन अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता था। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। 6 फरवरी सन 1948 की वो घनी सह रात, कुछ आगे बढ़ते कदमों की वो आहट, जो कभी थोड़ी थम जाती तो कभी साफ सुनाई देती थी। चाक चौबंद और कुछ निचली खाई की तरफ रास्ता बनाकर निगरानी करते भारतीय सैनिकों ने अपनी मशीन गन को निशाने पर लिया। एक दूसरे साथियों को देखा, इशारों ही इशारों में ये समझा दिया कि ये आहट बता रही है कि दुश्मन करीब ही है। कि तभी आगे की पंक्ति के मोर्चा बंद सैनिकों ने एक महार रेजिमेंट के बाकी सैनिकों को कवर देते हुए ये जाहिर कर दिया कि दुश्मन बेहद करीब आ चुका है और तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कि तभी लगभग 1200 दुश्मन सैनिकों ने खुद को अलग अलग वेव्स में लाइन अप कर अगली पंक्ति के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू

कृष्णा सुनावने की अगुवाई में एक महार रेजिमेंट के शूरवीर जवान मशीन गन से धुआंधार गोलियां बरसाते हुए शत्रु दल पर सिंह की तरह टूट पड़े।

कश्मीर की सफेद वादियों में अब सन्नाटा गहरा चला था, लेकिन तभी दूसरी एक और लहर दुश्मन सैनिकों की आगे बढ़ने लगी। ये तस्वीर अब तक साफ हो गई कि इनकी तादाद चाहे जितनी भी हो, ये हमला हमारे भारतीय सैनिकों की थाह लेने का था कि उनकी शक्ति को पहले कुछ पंक्तियों के सहारे बेदम कर इस चौकी को फिर हासिल किया जा सके। दोनों तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट ने पूरी वादियों को स्तब्ध कर दिया। ठंड और बर्फीली हवाओं में जहां सांस लेना भी मुश्किल था, अपने जिस्म जां की परवाह किए बिना हमारे फौजी आगे बढ़ते रहे। अब नौशेरा की इस एमएमजी पोस्ट पर चारों ओर से दुश्मनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और जबरदस्त बमबारी और गोलियां बरसाते हुए काफी पास आ गए। इस दोनों तरफ की गोलाबारी के बीच शत्रु सैनिकों को मौत की घाट उतारते हुए कृष्णा सुनावणे आगे बढ़ते रहे। लगातार हमलों और दुश्मनों से लोहा लेना, हथियार और गोला बारूद के जखीरे को भी आंकना, उन्हें फौजियों को मुहैया करवाना, सैनिक पोस्ट तक पहुंचवाने की नायक कृष्णा सुनावणे की जिम्मेदारी बड़ी थी। महार रेजिमेंट के कुछ सिपाही अगली पंक्ति में मोर्चा ले रहे थे और उनके ठीक बगल की पंक्ति में नायक कृष्णा सुनावणे थे। मशीन गन्स की गोलियों को खंगालते फिर निशाना साधा और अभी आगे कदम रखा ही था कि नायक कृष्णा के ठीक सामने भारतीय सैनिक, उनके रेजिमेंट के एक सैनिक जो नंबर एक गन पॉइंट पर तैनात थे और मोर्चा संभाल रहे थे, उनके ठीक गर्दन पर शत्रु की कई गोलियां एक साथ आकर लगी। वो बुरी तरह घायल हो गए। एक सैनिक ने बड़ी फुर्ती से उन्हें संभाला और पीछे लिया। इसी जगह पर बड़ी तेजी से पहुंचते हुए नायक कृष्णा ने इस मोर्चे को संभाला और उनकी अंधाधुंध फायरिंग से नायक कृष्णा सुनावणे ये समझ चुके थे कि अब ये जंग आर पार की है। शत्रु ठीक सामने था, उन्होंने एक तरफ से हथगोले दागे और दूसरी तरफ अपने मीडियम मशीन गन से बिना वक्त गवाए ताबड़तोड़ फायरिंग की और इतनी ही तादाद में शत्रुओं की तरफ से आती गोलियों की बौछारों ने नायक कृष्णा और उनके साथियों को भी बुरी तरह से जख्मी किया। निढाल शरीर लेकिन हौसला ऐसा कि दुश्मन दांतों तले उंगलियां दबा ले। सोचा जिस्म जान रहे न रहे, नौशेरा की ये पोस्ट हर कीमत पर महफूज चाहिए। इस मुठभेड़ में जब कृष्णा दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, दुश्मन की काफी करीब से निकलती एलएमजी की बारूद ने उनके दाहिने हाथ पर निशाना साधा और नायक कृष्णा का दाहिना हाथ लगभग बेदम हो चला। जिस्म खून से लथपथ, फिर भी उन्होंने अपनी मशीन गन को बाएं हाथ से उठाया और सिंह सी गर्जना करते शत्रुओं पर गोलियां बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में इस मशीन गन में कुछ ऐसी खराबी आई कि इससे गोलियां चलाने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई और शत्रु को सामने खड़ा पाया। नायक कृष्णा सुनावणे ने हैंड ग्रेनेड उन पर दागे और पास जाकर शत्रुओं पर अपनी संगीन से वार किया। इस बीच उनकी महार रेजिमेंट के सैनिक साथियों को भी आगे बढ़ने को वो प्रेरित करते रहे। इस घायल अवस्था में भी उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मौके पर ही ढेर कर दिया। दो घंटे तक ये जंग जारी रही। मैदान जंग से अपने पैर उखड़ते देख दुश्मनों ने जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी। इस अफरा तफरी में उनके असलाहे, गोला बारूद और कुछ खुफिया दस्तावेज भी वहीं रह गए, जिसे बाद में एक महार रेजिमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया। नौशेरा की ये अहम पोस्ट जिस पर फतेह का तिरंगा फिर से लहरा उठा और सैनिकों की आंखों में खुशियों की चमक थी कि मादरे वतन की आन बान और शान जिंदगी से ज्यादा महफूज रहे। देश की मिट्टी को लहू का सलाम पहुंचे। हम रहे न रहे, भारत की आन रहे।

साथियों, भारतीय सेना की एक महार रेजिमेंट में शेर दिल सिपाही नायक कृष्णा सोनावणे महाराष्ट्र के जवानों में ऐसे पहले सेनानी या प्रथम सैनिक थे जिन्हें भारतीय सेना की तरफ से महावीर चक्र प्रदान किया गया। इन्हें महाराष्ट्र में धरती पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। फौजी साथियों, सन 1947-48 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई इस जंग में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फतेह का तिरंगा लहराने, सेना के सफल निर्देशन, अदम्य साहस, कमाल की सूझबूझ, अतुलनीय रणकौशल और वीरता के लिए भारतीय सेना की एक महार रेजिमेंट के निर्भीक और धाकड़ सिपाही नायक कृष्णा सोनावणे को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम नायक कृष्णा सोनावणे को सलाम करते हैं।

प्यारे साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सुनावने की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग मनीषा सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी सुपर

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे सुनील गांगुली का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हम दोनों और मेरे महबूब।

0: अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में हम दोनों फिल्म का ये गाना सुना। इसे लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था।
1: कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राम धुलिया।
1: जय राम जी की भाई।
0: साहब सरकार के लौटे नहीं अभी?
1: अभी तो नहीं आए।
0: गुलदस्ता बना लाया हूँ, आए तो कह देना, मोतिया के फूल अभी खिले नहीं है इसीलिए नहीं लाया, कहीं वो बरस पड़े और कल से मेरी जगह कोई और माली आ जाए।
2: नमस्ते साहेब।
3: नमस्ते। कोई टेलीफोन आया था?
2: जी नहीं।
3: और हमारी सेक्रेटरी चपल आई या नहीं?
2: जी नहीं, अभी वह नहीं आई।
3: ये क्या हाल बना रखा है अपना?
2: साहेब मेरा बच्चा जीवन सख्त बीमार है।
3: क्यों, क्या हुआ उसे? अच्छी तरह दवा दारू करो, जो पैसा चाहिए वो हमसे ले जाओ।
2: मेहरबानी है आपकी साहेब, अगर आप कहें तो आज मैं
3: देखो बाहर कौन है।
2: जी अच्छा।
4: गुड मॉर्निंग वर्मा साहब।
5: नमस्ते वर्मा साहब।
3: नमस्ते नमस्ते। आओ रीचा बैठो। केशवानी सुनाओ कैसी तबीयत है, कहाँ हुआ है?
4: जी हमारे ड्रामा क्लब का नया नाटक अदाकार हो रहा है, उसकी टिकट बुक्स और पोस्टर लाई हैं, ये देखिए।
3: वाह बहुत खूबसूरत डिजाइन बनवाया है। आजकल तुम्हारे ड्रामा क्लब की अच्छी धूम है शहर में।
5: सब आपकी बदौलत है, जब से आप मेंबर बने हैं क्लब की हालत सुधर गई।
4: पिछले ड्रामे में अगर आप 500 रुपीज ना देते और अखबारों में हमारी पब्लिसिटी ना कराते तो हमारी तो पोजीशन ही बिगड़ जाती।
3: वो तो खैर मेरा फर्ज है, ड्रामे का शौक तो मुझे बचपन से ही है लेकिन पूरा करने का मौका ही नहीं मिला।
5: देखने में आप अच्छे खासे एक्टर मालूम होते हैं। सच मानिए जब मैंने पहले दिन आपको देखा तो समझी थी कि आप
3: एक्टर।
4: वर्मा साहब इस बार बताइए कितने टिकट दे जाए आपको?
3: 200-300 के दे दो, बांट देंगे यार दोस्तों को।
2: चाय साहब।
3: हाँ धुलिया रखो।
5: वर्मा साहब अखबारों में अभी से पब्लिसिटी भिजवा दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे।
3: नहीं तो सेक्रेटरी आती ही होगी, आज ही लिखवा लेता हूँ।
4: आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं।
5: अभी मत बताओ रीटा, पहले इनसे मिठाई खिलाने का वादा लो।
3: मिठाई जितनी चाहे खा लेना, मगर बात क्या है?
4: ड्रामा डायरेक्टर ने इस ड्रामे में हीरो का पार्ट आपको दिया है और ये रहा आपका लिखा हुआ पार्ट।
3: और हीरो?
5: जी हाँ, उन्हें आपकी चाल डाल लबो लहजा बहुत पसंद है। और हाँ कहते थे आप माइंड ना करें, पार्ट तो एक दुखी नौकर का है मगर नौकर ही ड्रामे का हीरो है।
4: और हाँ डायरेक्टर साहब ने तो ये पार्ट किसी असली नौकर को भी दे रखा है, मगर हम सब तो यही चाहते हैं कि ये पार्ट अच्छी तरह से तैयार करके आप ही करें।
3: वो तो सब ठीक है रीटा, मगर वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, मैं आखिर कैसे कर सकता?
4: वर्मा साहब हमें अगर कोई हीरोइन का पार्ट देता तो हम तो एक ही दिन में तैयार कर लें, फिर ये पार्ट आपको रिहर्सल में तो याद हो ही जाएगा।
5: जी हाँ आपको तो सिर्फ एक दुखी गिड़गिड़ाने वाले नौकर के एहसास चाल ढाल बोल चाल वगैरह को समझना है। रीटा तुमने उस हॉलीवुड के एक्टर के बारे में?
4: हाँ वर्मा साहब, हॉलीवुड के एक एक्टर के चेहरे पर गुस्से का भाव आता ही नहीं था, तो उसने क्या किया कि राह चलते राहगीर को कंधा दे मारा।
3: अच्छा।
4: और राहगीर ने जो ही पलटकर गुस्से से देखा तो खट से नोट कर लिया कि गुस्से में किस तरह नथने फूलते हैं, माथे पर तीवर चढ़ते हैं और होठ सिकुड़ते हैं।
5: यूं इतनी दूर क्यों जाती हो रीटा? अपने मशहूर स्टेज एक्टर शहनाज को ले लो, एक बार उन्हें गरीब चपरासी का पार्ट अदा करना था तो उसके लिए उन्होंने खुद अपने चपरासी पर तजुर्बा किया।
3: वो कैसे?
5: ऐसे कि वो उसे रात दिन झिड़कते रहते, उस पर गुस्सा करते रहते और इसका जो असर चपरासी पर होता उसकी नकल करते रहते।
3: वाह वाह भाई बहुत खूब मिसालें दी आप लोगों ने।
4: अच्छा वर्मा साहब अब हम चलते हैं।
3: बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है?
4: नहीं नहीं वर्मा साहब, अचानक हमें याद आया कि 2 बजे एक जगह और भी जाना है। वर्मा साहब याद रखिए आपका पार्ट बहुत रोने गिड़गड़ाने का है।
3: अच्छा अच्छा,
4: अच्छी तरह से तैयार कीजिए।
3: हाँ, हाँ, अच्छा भाई कोशिश करूंगा जरूर। अच्छा अच्छा,
5: बाय बाय
4: बाय बाय।
3: नमस्ते नमस्ते। तो नौकर का पार्ट करना है, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। शाहनाज ने चपड़ासी का पार्ट करने के लिए चपड़ासी को स्टडी किया था, उस पर बनावटी गुस्सा,

0: तो मैं भी अपने नौकर के पार्ट के लिए यानी नौकर के पार्ट के लिए अपने नौकर। ठीक है ठीक है,
1: ये लीजिए साहेब लिफाफे, पोस्ट कार्ड और टिकट।
2: कहाँ मर गया था
1: जी? आप ही ने तो भेजा था डाकखाने लिफाफे लेने को।
2: लिफाफे का बच्चा जब देखो जब गायब रहता है।
1: जी मुझे तो आपने
2: ही। और उल्टा मुझ पर ही बात डाल रहा है।
1: जी मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा, मैं सच कहता हूँ।
2: देख लिया तुम्हारा सच, झूठ बोलना तुमने पेशा बना लिया है।
1: साहब भगवान मेरा जानता है मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला। मैं तो बस डाकखाने तक गया हूँ और उल्टे पैरों वापस आया हूँ, मुझे कसम दिलाई लीजिए।
2: हाँ दिला रखी है कसम, जाओ काम देखो अपना।
1: जी बहुत अच्छा।
0: रीटा और केशवानी कहती तो ठीक ही थी कि एक्टिंग में असर लाने के लिए जिंदगी के असल किरदारों को ही समझना चाहिए। साहब साहब भगवान मेरा जानता है मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला। ना, ना, ना। आवाज में कुछ और गरीबी आनी चाहिए। मुझसे कसम ले लीजिए हुजूर, मैं तो बस उल्टे पैरों डाकाने से नहीं नहीं नहीं और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हौसला लाना पड़ेगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
0: चपला इतनी देर कैसे हो गई? तुम प्राइवेट सेक्रेटरी हो या अफसर?
3: जी घर में मेहमान आ गए थे, ये पोस्टर कैसा पड़ा है? अदाकार?
2: हाँ एक ड्रामा हो रहा है, हम इसमें हीरो का पार्ट कर रहे हैं।
3: सचमुच? फिर तो हमें भी देखने का मौका दीजिए, ड्रामा में पार्ट करने का तो मुझे भी बहुत शौक है।
2: अच्छा देखो पहले सारे किराएदारों के किराए की रसीदें बनाओ और उनके पास भिजवा, बहुत जरूरी है।
3: अभी जाती हूँ।
2: धुलिया
1: जी कहिए।
2: कल दुबे जी का सामान वक्त पर क्यों नहीं पहुंचा कर आए?
1: जी जी मैं आपके कहते ही दे आया था।
2: वो कहते थे तुम शाम के 5 बजे वहां पहुंचे थे।
1: जी नहीं मैं सुबह 11 बजे देकर आया हूँ।
2: इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे हैं। धुलिया हर आदमी तेरी शिकायत करता है, याद रखो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
1: नहीं साहब ऐसा ना कहिए, मेरी नौकरी न छीजिए, मेरे साथ 3-3 पेट बंधे हुए, मैं कहां अपना परिवार लिए लिए नौकरी करूंगा। मैं कभी आपकी सेवा में कमी नहीं करूंगा सर।
2: बस बस रोना धोना बंद करो, बाहर जाओ।
0: वाह ये हुई ना कुछ बात।
1: साहब साहब मेरी नौकरी मत छीनिए, मेरे साथ 3-3 पेट लगे साहब, मैं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरूंगा।
0: पहले से अच्छा है, मगर अभी नौकर वाली गिड़गिड़ाहट नहीं आ रही।
1: मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, घर से खबर भिजवाई है कि छुट्टी लेकर जल्दी चला। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, मेरे बच्चे जीवन की हालत बहुत खराब है साहब, मेरे बच्चे की हालत खराब है साहब, मुझे छुट्टी दे दीजिए।
2: देखा अभी अभी कसम खा रहा था, अब लगा छुट्टी मांगने। एक मामूली नौकर होकर भी तुझे ये 100 रुपए की नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, हम तेरी पूरी तरह से छुट्टी कर देते हैं, आज से तेरी नौकरी खत्म।
1: नहीं नहीं साहब ऐसा ना जुलम कीजिए, तरस खाइए, मेरे साथ में मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, नौकरी मुझे कोई नहीं मिलेगा सरकार, मेरी नौकरी ना छीनिए।
2: बस बस बाहर बैठो, हम अभी तुम्हारा हिसाब कर देते हैं।
1: रहम खाइए सरकार, मुझे जीते जी नवालिए।
2: तुम ऐसे नहीं मानोगे, बुलाऊं किसी को, बाहर निकलाऊं धक्के दिलवाकर?
1: जाता हूँ सरकार, लेकिन रहम खाइए रहम खाइए भाई बाप।
0: वंडरफुल एक्सीलेंट, ये हुई ना बात। ऐसी एक्टिंग अगर मैं कर दूं तो बस।
1: नहीं नहीं साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार, मुझ पर तरस खाइए, मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है सरकार, जेब में पैसा नहीं है, मुझको तो कोई भीख मांगने पर भी नहीं मिलेगी सरकार, सरकार मेरी। कौन है?
4: डायरेक्टर साहब मिजाज शरीफ,
5: दुआ है नजरे इनायत हैं, जी रहे हैं अपने सहारे।
4: डायरेक्टर साहब वो साहब आपके साथ बाहर खड़े हैं ना?
5: जी हाँ जी हाँ। अरे बेटा सलवेट अंदर आ जा, अरे वहाँ क्यों खड़ा है?
4: जी हाँ अंदर आइए।
6: आ जाऊं चाचा जी?
5: हाँ हाँ आ जा बेटा आ जा।
4: इनकी तारीफ?
5: जी हमारे क्लब के नए मेंबर हैं मिस्टर सलवेट, वैसे रिश्ते में मेरे भतीजे होते हैं, आजकल बेकार थे, मैंने सोचा इनसे कोई पार्ट कराया जाए, जरा शर्माते ज्यादा।

0: सिल्वर साहब, आपको एक्टिंग का कब से शौक है?
1: जी बता दूं क्या था जी?
2: हाँ हाँ बेटा, अपने ही आदमी हैं
1: जी। मैं बचपन में रामलीला किया करता था। एक बार मैं
0: जी हाँ शर्माइए नहीं, कहिए।
1: बता दूं चाचा जी।
2: तू तो शर्माने की हद कर रहा है सिल्वर।
1: जी मैंने सरूपनखा का पार्ट किया था एक बार।
0: वाह वाह, तो आप लड़कियों का पार्ट भी करते हैं और इस ड्रामे में भी आप कोई पार्ट कर रहे हैं?
1: जी हाँ।
0: क्या पार्ट कर रहे हैं?
1: बता दूं चाचा जी।
2: बता दो बेटा
1: जी। भरगुंजे का।
3: वर्मा साहब, रसीदें तैयार हो गई हैं।
2: वर्मा साहब, मैंने अपने नए ड्रामे में एक नई लड़की के लिए आपसे जिक्र किया था, याद है ना?
0: अरे हाँ डायरेक्टर साहब, इनसे मिलिए, मिस चपला, मेरी सेक्रेटरी। ड्रामे का बहुत शौक है इन्हें।
2: ओहो मिस चपला, मैं आपसे कुछ डायलॉग बुलवा कर देखना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज?
3: जी नहीं, बड़े शौक से बुलवाइए।
2: अच्छा तो यूँ समझिए कि ये मिस्टर सल्वर्ट हीरो हैं और आप हीरोइन। आप इनसे कहती हैं, मोहन मैंने तुम्हारे लिए समाज छोड़ा, घर बार छोड़ा, मगर तुमने मेरी तरफ कभी मीठी निगाहों से नहीं देखा, आखिर क्यों? इसे बोलिए।
3: बहुत अच्छा। मोहन मैंने तुम्हारे लिए समाज छोड़ा, घर बाहर छोड़ा, मगर तुमने कभी मेरी तरफ मीठी निगाहों से नहीं देखा, आखिर क्यों?
1: जी बता दूं चाचा जी।
2: बता दूं के बच्चे, तुझे अपना डायलॉग बोलना था, सब खेल बिगाड़ देता है। खैर अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, कभी हमारे क्लब में आइए।
3: जी बहुत अच्छा, मैं जाऊं वर्मा साहब।
2: हाँ जाओ। वर्मा साहब, हमने रीता और किशवानी को आपके पास।
0: जी हाँ डायरेक्टर साहब, आपका पैगाम मुझे मिल गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है।
2: वेरी गुड।
0: इसके लिए मुझे अपने नौकर से बहुत कुछ सीखने को मिला।
2: जी वो कैसे?
0: रीटा ने शाहनाज एक्टर की मिसाल दी थी कि चपड़ासी का पार्ट करने के लिए उसने अपने चपड़ासी को स्टडी किया, तो इसी तरह मैंने नौकर का पार्ट करने के लिए अपने नौकर को स्टडी किया।
2: जरा बताइए तो कैसे स्टडी किया और क्या सीखा आपने?
0: मैंने यूं ही झूठ मूठ उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, उस पर वो कैसे गड़गड़ाया सुनिए।
2: बोलिए।
4: साहब मुझे नौकरी से ना निकालिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे साथ 3 पेट बंधे हैं साहब, मुझ पर रहम कीजिए साहब, मेरे हाथ में हुनर नहीं है साहब, जेब में पूंजी नहीं है साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब।
0: मैंने
2: जवाब नहीं साहब,
0: मैंने कहा सुनिए एक्टिंग कैसे लगी आपको?
2: अरे साहब सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया आपने।
0: शुक्रिया। आपको कैसी लगी सिल्वर साहब?
1: बता दो चाचा जी।
2: हाँ बता दो बेटा, बता दो, तुम भी बता दो।
1: आपने तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग की।
0: डायरेक्टर साहब,
2: हाँ जी,
0: सीखा तो बहुत कुछ, पर मुझे बहुत रहम आया अपने नौकर पर। कहता था कि उसका बच्चा बहुत बीमार है।
2: तो अब आप और न सीखिए, उसे 10-20 रुपए इनाम दे दीजिए और कहिए कि उसे नौकरी से निकाला नहीं है आपने।
0: हाँ उसे बुलाकर कह देता हूँ कि तुझे नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि नौकरी की एक्टिंग सीख रहा था।
5: तो साहब मेरा रोना धोना ही कौन सा असली था, मैं भी तो।
2: अरे धुलिया तुम? अरे वर्मा साहब ये भी क्लब के मेंबर हैं, दरअसल ये नौकर का पार्ट इन्हीं को दिया था मैंने।
5: मगर नहीं डायरेक्टर साहब, अब तो वर्मा साहब से ही कराइए, मैं इनसे अच्छा नहीं कर सकता। और हाँ मेरा इनाम
1: दे दो चाचा जी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी। इस गाने को गाया है अभिजीत सिंह और रोचक कोहली ने। गीत कुमार का है, संगीत रोचक कोहली का।

अभी आपने अरिजीत सिंह और रोचक कोहली को सुना, फिल्म थी सोनू के टीटू की स्वीटी। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी को, फिल्म है आर आर आर, गीत रिया मुखर्जी का है, संगीत एम एम करीम का।

0: अध्यक्ष देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों थी आंखों में इशारा हो गया।
3: आइए अब सुनते हैं छिछोरे फिल्म का गाना तुषार जोशी की आवाज में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजा।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: आइए अब सुनते हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गाना, वाजिद अली की आवाज में। गीत प्रसून जोशी का है, संगीत साजिद वाजिद का।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी।

0: जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
4: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत

0: आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर

0: पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के गाए इस गाने से। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
3: किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर को सुनिए। फिल्म का नाम है अपने रंग हजार, गीत अनजान का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जॉनी मेरा नाम, जी हाँ ये नाम है फिल्म का, जिसका गाना अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती की दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे न जाओ शाम पैया परू बीच धारे न जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कितनी विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्कानें, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

सन्नाटे की जुशाला में हम एक रात बुनते हैं। इस रात को बुना जाता है खामोशी के तागे से। इस रात में अपने सपनों के मोती टांग दिए जाते हैं। वक्त के करघे पर कोई बुन रहा है अपने हिस्से की एक रात। वो रात जिसमें यादों की मोमबत्ती जल जल कर पिघलती है पर मुस्कान बिखेरती रहती है। बुन रहे हैं हम रात, हमारे हिस्से की रात।

समय एक लगातार बहता धारा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कहीं कोई आखिरी सिरा नहीं है। समय के इस विशाल प्रवाह में हम एक छोटा सा रेशा ही तय होता है कि कौन कब किसका हम सफर बनेगा, कैसे हम चलेंगे जिंदगी की राहों में साथ साथ।

0: समंदर के किनारे बैठी तो लगता है कितना विराट है ये समंदर और कितने छोटे से हम। लहरें आती हैं और अचानक भिगोकर चली जाती हैं। समंदर की चहल पहल के बीच भी होता है एक अजीब सा खालीपन। समंदर कितना कुछ सिखाता है हमें। समंदर सबसे ज्यादा ये सिखाता है कि टूटकर कैसे प्यार किया जाता है। किनारे के प्यार में समंदर सदियों से बार बार लौटता है किनारों की तरफ। इस तरह लौटना दुनिया की सबसे प्यारी बात है। प्यार करने वाले बार बार लौटते हैं एक दूसरे की तरफ।
1: दो दीवाने शहर में।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं।
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभास सिंह।
1: नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सृजन भारती है उसका शीर्षक है ए जिंदगी गले लगा ले। आम जिंदगी में जो तनाव होते हैं और दबाव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और

ये सब सोचते हुए आज का ये विषय रखा है ऐ जिंदगी गले लगा ले। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर नयन वर्मा। प्रोफेसर नयन वर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत जबरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं जो कि

0: और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं, जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं, जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीजों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों ये मंच और ये माइक्रोफोन।
1: नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। हम सबसे पहले डॉक्टर सुमति ओझा से हम जानना चाहते हैं। सुमति जी, बताइए कि आजकल लोग समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जैसे इग्नोर कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
2: आपका सवाल बहुत ही एप्ट है। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपना सिक्स पैक दिखाने बहुत आसानी से बाहर निकल के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है
1: जी,
2: तो उसे छिपाते हैं
1: जी।
2: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में, मानती हूँ,
1: और चर्चित
2: और मेरी फेवरेट भी है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है, मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट नीड्स, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए, जिससे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति टू टेल और ये बताना और पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से, इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत, वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा, ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो, एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसे कहते हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से, इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है, इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
1: बिल्कुल सही कह रही है। अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज्यादा खराब होता है, कमजोर होता है, और पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं और यही करियर का बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नैन वर्मा जी हैं, तो हम नैन जी से पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना न पड़े।
3: इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप साइंस लेते हैं, सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं
1: जी।
3: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देर इज नो टर्निंग बैक। तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है। अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं तो 8th 9th 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते तो ऐसे लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसके फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच लिया, तो

0: वो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट से वहां तक पहुंच रही है. तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं. डेफिनेटली इट इज वेरी सैड पार्ट ऑन अवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की जरूरत पड़े. मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और उसके लिए अपनी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए. इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है. तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए. टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो
1: जी
0: उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए. और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए.
1: जी
0: अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है. लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज कैसे करते हैं, लेजर कैसे यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, सीटी
1: जी
0: स्कैन मशीन क्या होती है. ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते हैं. तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए.
1: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है, तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की जरूरत है?
0: अगेन यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आपको उनका बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करना चाहिए. और अगर उनको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए. तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं. हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं. वो बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो
1: बिल्कुल
0: मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये डबल प्रेशर है. जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11th 12th के मार्क्स पे एडमिशंस होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे. अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में. तो ऐसा बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है. हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं. अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूं तो 11th 12th का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ्स है, लेकिन बच्चों को मिलते हैं सिर्फ 18 महीने. उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन खत्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है. बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम से. वापिस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं. तो
1: बिल्कुल
0: ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तफाक रखूंगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको.
1: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
2: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आई एम श्योर कि काफी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता
1: ओ,
2: है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल
2: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है। देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं,
1: जी
2: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो, तो
1: जी
2: आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं,
1: अच्छा
2: क्योंकि वो जानते हैं कि देर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहिए।

0: हैं और मैं बच्चों की तरफ हूं बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज. और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं. वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में. देर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर. एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे. तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम. वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो. तो आई थिंक समवेयर देर इज, मतलब वो कहते हैं ना इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है. और आप कहेंगे कि द थ्री इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो. एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये जरूरी है. क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
1: जी.
0: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल किट है. हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है.
1: बिल्कुल.
0: देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है. वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है. आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं. आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते. तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है.
1: जी जी.
0: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120. किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है.
1: जी.
0: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ. बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया. ही डजंट नो कि क्यों मुझे भेजा गया है. और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है. आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो. और अक्सर मैं
1: सही बात है बिल्कुल.
0: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ
1: जी.
0: कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है. सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस.
1: जी.
0: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे.
1: जी.
0: आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं और वो नहीं बता पाते हैं.
1: क्या बात है, ये तो
0: सोचने लगते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 5 इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए
1: तो
0: दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं
1: 10,
0: कि आपको पता नहीं ये कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है. और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है यू नो. और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है, निकल जाएगा. तो मुझे ये करना पड़ता है.
1: तो एक नई बात सामने आई है. सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए. प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं तो नया जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे.
2: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं तो मैं जब तक जानता हूं मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 years plus 50 years plus प्रोफेसर हूं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मैच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे. तो मुझे उसके जैसे बच्चे बनके पढ़ाना होता है. और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं. डांटते हैं, उनका गुस्सा शायद 30 सेकंड का होता है.

0: है और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकंड में शांत हो जाएंगे एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई
1: जी
0: एम योर एकेडमिक फादर. तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूँ, तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूं. और आई एम श्योर काउंसिलर तक जो कंप्लेन जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा.
1: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां। ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर के
0: डेफिनेटली
1: तरीके?
0: है. एग्जाम्पल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है, मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया, सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था. मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला. पापा एकदम पेट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश. इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है. जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था तो ग्रैंडफादर और फादर हमको बोलते थे कि वैकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो. तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था. तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग.
1: जी
0: तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है. तो
1: जी
0: जो बच्चे 8th 9th में भी हैं अभी और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है, फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है.
1: ओहो
0: तो आपका फियर अगर 8th 9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा. फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है. तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं.
1: जी
0: अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे. अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए. आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नैन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पे लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है. लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूं.
1: बिल्कुल
0: तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है. अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में और जब आप फिजिक्स लेते हैं तो आप तब भी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. फिजिक्स इज मैथ्स.
1: क्या
0: न्यूटन
1: बात
0: रोट
1: है
0: द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली
1: जी,
0: अ मैथमेटिशियन. आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज प्योर मैथ्स. अगर आपको मैथ्स नहीं आती है मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है.
1: क्या बात है, बहुत सही बात कही है। और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट है, वो लॉ कर रही हैं और आए, अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें।
2: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस व्हिच इज नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। यस
3: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज एक्चुअली एक तरह की एंजाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब एंजाइटी और फियर में एक फर्क है। एंजाइटी एक ऐसा इश्यू है जहां, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप जंगल से जा रहे हैं, वहां कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंजाइटी कहते हैं।
1: जी
3: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं। घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी।
1: बिल्कुल
3: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूं, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी, उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स। तो ये एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है। आप बार बार

0: सबसे क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है। आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक, मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत सही बात।
0: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल। आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो। एंग्जाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन। तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी, एंड कीप योर सेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं, प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल। तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस। और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा। ये सिर्फ 60 प्लस के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है। इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक।
1: नैन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं।
2: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ। सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है तो वो उसे होता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज नॉट मोर देन 6 to 7 आवर्स। कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज्यादा नहीं बिठा सकते। आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें। अगर कोई बच्चा सुबह 1 बजे 2 बजे पढ़ता है तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में वो हो गए, 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए। आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए। इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल। तो मेरी हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट। When you study it out of pressure and when you study it out of entertainment, definitely आपके पढ़ने में फर्क होता है। See, as far as brain is concerned, some people are gifted. Let us not compare that way कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है। ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट? कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से, जैसे तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है। कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज करोगे उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है।
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं, वेदांत, परिचय दें वेदांत, और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछे।
3: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं, और बात आती है अपस्किलिंग, अपस्किलिंग, तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं, एक और नई चीज मार्केट

0: में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद खुद ये चीज फेस कर रहा हूँ। तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
1: आप इस जनरेशन के हो, इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज एक मॉल की तरह है। हम जब
0: क्या बात
1: छोटे
0: है।
1: थे ना, तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे। आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कंफ्यूजन इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर है। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है, या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नायन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूं एज ए काउंसिलर, डेस्टिनेशन जो भी हो, जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
2: क्या बात है,
3: सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात
1: वरना
3: आपने
1: क्या
3: कही।
1: हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूं, और उन्होंने
3: जी जी
1: बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए। और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल, तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू
3: जी
1: डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना जरूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो AI प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज, अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा। तो दोनों नीचे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब 2 बार मांग के खाता हूं इसका मतलब अच्छा ही है।
3: बढ़िया।
1: नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूंगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन।
2: क्या बात,
1: छोटी छोटी
3: सही बात।
1: बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो, आपके लिए कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
3: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है। हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो NCERT की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके।
2: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहां पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं।

और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे. ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई मेन्स हो, उसका बेसिक बुक ही एनसीईआरटी है. लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं. बट एज फार एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक. उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप अपना काम डिवाइड कर लें. अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए. देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में. अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए. एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7:23 या तो 7:24, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते. बिकॉज सीधी सी बात है, बच्चा जो देखेगा वो करेगा. आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए. तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए. जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग. सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसिलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू नो यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको. लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि एमसीक्यू उसके कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं. मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस. यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग मेरे साथ में पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना था. मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देयर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है. आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीन होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा मेरा इंटरनल हीट उतना है. तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 years back, 25 years back, 20 years back. अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है, हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो. मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं. तो जैसे आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरली उसके बारे में सीखना भी होता है. इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो. एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है. वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है. मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं

0: नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है। आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहां बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीख करने के लिए, या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंगर पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया, और उसका कुछ नहीं बोलते हम। तो वो समझ जाता है, ये
1: बिल्कुल
3: माइंड ऐसा है। लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन,
1: जी
3: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है,
1: जी जी
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है नरसिम्हाजी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिम्हाजी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे, सुमति जी से, कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसा
4: हिंसात्मक हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं, और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी। तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
3: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत, मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको, रोड रेज जिसे कहते हैं, इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेट

0: हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, क्योंकि वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है। इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है, और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
2: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली चूंकि सब जगह अब कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजे, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
0: मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहां टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है, और इनको काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजकर मदद लेना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू। क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना इजी नहीं है, और ये
2: बिल्कुल
0: फिर नारकोटिक सेल तक जाता है, और कॉलेजेस चाहते नहीं है कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल के लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहां पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूं, द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट। तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है,
1: जी
0: और
1: जी
0: वहां वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही। दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं।
3: मेरा नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेई मेन्स की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलिडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर, या फिर कुछ देर इज सम प्लानिंग? कितना प्लानिंग करते हो आप? वहां वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो, अम्ब्रेला की जरूरत है, स्वेटर पहनना है, डबल लेयर पहनना है, कितना पूछते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वांट टू प्लान। तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है ना? कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है। और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूं,
1: बिल्कुल,
0: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह, वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल,
0: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो, ये जो फोन है ना इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो, इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। सुबह उठ के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो। स्टीव जॉब्स करते थे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है। बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है। तो आपके पास ये भी माइंड

0: सेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं, बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको।
1: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है, इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज मैं 7 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है, क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूं, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूं, तो आई हैव टू बी माई ओन एडवाइजर। तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीजें मोबाइल में स्टोर करते हैं, नोट्स करके मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसकी बाजू में स्माइली करता हूं कि नयन वेल डन। वैसे आप अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, राइट। यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड। घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आपको स्माइली दो, हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है। हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही, एंड मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग। मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाय स्टूपिड पेटी थिंग्स इन लाइफ।
2: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
3: मेरी बेटी है, 6 साल की है, सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग। ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उसे झूठ बहुत बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में, वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत। तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना, वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके, मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल। तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उसको उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है। कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप?
0: आप आई वुड से लकी है कि वो इतना बात करती है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, कोई पूछते भी नहीं,
2: वो ज्यादा मुश्किल है।
0: सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहां बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है। तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी। बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए। भूत है ये डराना, ये सही नहीं है।
3: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने देखा नहीं ये भूत को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है, है ना?
2: बिल्कुल सही बात है।
0: सो अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है, लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है, आई वुड से बी ऑनेस्ट, बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए। उतना ही दो जितना वो समझ सके, एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सही जवाब दो, एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग, वेरी गुड।
2: बिल्कुल,
4: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक विद्युत भारती। अभी जो बात चल रही थी उससे से जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है,
0: डेफिनेटली।
4: हाँ, तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
0: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है, वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
4: अच्छा,
0: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि उनके घर पर कौन कौन है।
4: हाँ।
0: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं।

0: कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर देन,
1: जी
0: तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है। और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है, और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। आई कांट क्रिएट अ वॉर बिटवीन हस्बैंड वाइफ आफ्टर काउंसलिंग सेशन,
2: जी ये बहुत सही बात है,
0: दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकंड सेशन आए
2: जी,
0: तो माय चैलेंज इज गेटिंग देम फॉर द सेकंड सेशन। पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ कि वही सजेशन देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग।
2: जी एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा।
3: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। नाउ आई एम इन सिक्स स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स है जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते?
2: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे। कहिए नयन सर, बताइए, आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है।
4: भले आज मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे भी दो तीन नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। मुझे सिविक्स कभी पल्ले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स आते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो, तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसका जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है। तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी। यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो, ओके?
2: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है अब। लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
5: विद भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूं तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊं, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
2: क्या बात है।
5: और आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर रोजा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
5: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं, हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है। नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है, हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने यह किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी
2: जी,
5: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी

0: और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी। और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोजा कह रही हैं कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते कि बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं। तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी जी।
0: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी, क्या बात
0: तो
1: है,
0: बहुत अगर वो समझदार हैं तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है।
1: बहुत शुक्रिया विभा जी, वक्त निकाल के आप आई। अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं, हम समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नयन जी आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉ सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओत प्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज में दोस्ताना फिल्म का गीत। अन्विता दत्त गुप्तन ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी है। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं, उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं।

तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमान

नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारे एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत, काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर

चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक एक समय होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पे, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो

0: बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए। तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत। मन्नाडे की आवाज, गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

0: मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
1: जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तब शब्द भूल जाता हूं, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूं, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: रोग लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

बनाना। किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, व्हाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध है, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए व्हाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या व्हाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी।

0: लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिग्ना दिग्दिग्ना दिग्दिग्ना दिग्दिग्ना दिग्दिग्ना दिग्दिग्ना।

दुनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन तेज थे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न मच तक सगन का किट तक किट तक सगन का जी सगन नदा ताधा किट तक सगन का ताधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे

0: था।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज

0: अजमे कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: देश की सुरीली धड़कन, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियाँ आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

हैं शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार। शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम

मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्शलायल पुरी ने इसे लिखा है खयाम का संगीत और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा अजमीन गुड़िया ने। और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूलवाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह फूलवाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मन चाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब

0: इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: शहनशाह बहादुर शाह जफर की खिदमत में गुलाम बख्त खां कोर्निश बजा लाता है।
1: नहीं नहीं, बख्त खां आप गुलाम नहीं हैं, आप तो मुल्क के सिपह सालार हैं। इस बदनसीब बादशाह बहादुर शाह जफर की उम्मीदों की आखिरी किरण।
0: शहनशाह का इकबाल बुलंद रहे, हम और हमारे तमाम सिपाही जो कुछ भी हैं आपकी ही बदौलत हैं। जजाक अल्लाह, ऐसे नाजुक माहौल में भी आप अशार इरशाद फरमा रहे हैं।
1: कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं बख्त खां, जिनके जख्मों से बहते लहू की रफ्तार दम तोड़ने लगती है, फिर ये जख्म रिसना शुरू कर देते हैं और इंसान अपने आप को बेहिरासा पाने लगता है, और तब यही रिश्ते जख्म दिल को जुबान बनाकर अशार कहने की ताकत अता कर देते हैं।
0: बजा फरमा रहे हैं जहां पना, जान की अमा पाऊं शहनशाह, अशार और वो भी ऐसे वक्त में।
1: हाँ हाँ बख्त खां, अशार की आमद ऐसे ही वक्तों में होती है। हमारी कमसिनी में मौलवी साहब की बयान की हुई एक बात याद आ गई। कुछ इंसान अपने आप को चौतरफा अंधेरों मुश्किलों मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं, तो उनसे नजात पाने के लिए उनका कल्ब बिलबिला उठता है, वजूद थर्राने लगता है, सांसें चीखों में बदल जाती हैं, रोशनी रोशनी इन्हीं चीखों के सोतों से निकलते हैं अशार।
0: सरे तस्लीम खम है मेरे आका, मगर मेरे सरकार, ये वक्त टूटे हुए दिलों की बदकिस्मती पर मातम करने, आंसू बहाने या न महरूमियों का नहीं, बल्कि दिलेराना हिम्मत और नए ताजा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
1: आंसू बहाए नहीं जाते बख्त खां, ये तो खुद ब खुद बहने लगते हैं। खैर छोड़ें इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
0: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
1: तो फिर इंतजार किसका है, जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे।

0: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
1: क्या कह रहे हैं बख्त खां?
0: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
1: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के बीहड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
0: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
1: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
0: एलची रवाना कर दिया है अलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
1: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
0: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादाजान।
1: दादाजान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
1: क्या
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गईं?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगी?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
1: हाँ।
0: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं?
1: हाँ?
2: रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई।

0: मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
1: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
1: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हीं शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झां कर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
1: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पृष्ठ थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफ्ताब के शोले दहकते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा है सामने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मुहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मुहर की वक्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा।

0: आप जहां कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
1: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
0: बजा फरमा रहे अलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
1: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
0: आलिया, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है, आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन? लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जहा? मकबरे में पनाह लेने वाला आली जहा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने एज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेस बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की माथहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है।

0: वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये जईफ बादशाह जफर।
0: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
2: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
0: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
1: बख्त खां, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
0: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
2: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
0: आप खामोश हैं आलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
1: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
2: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
1: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
2: वो आ गए।
1: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
2: फिरंगी, मैं देखता हूं।
1: मलिका आलिया,
3: मेरे सरताज,
1: हम आखिरी दाव हार गए। फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्त खान को बुलवाएं।
4: बख्त कैन, बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
1: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था।
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
1: मत कर इलाही बख्श।
4: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
4: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत, मर्डर का इज्जत, तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह, तुम जानता है, मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
4: आई नो, हम हेटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट, आई मीन।

0: दो फेके साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
1: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में।
2: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तश्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गईं। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फाफिया पड़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं।

तोहफा। अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।